जी हाँ, ये है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे रेखा क्रिस्टल वॉइस, और ये है दिल का मेल बॉक्स जिसमें आप हमें अपनी फरमाइशें भेज सकते हैं और अपने नाम शहर के नाम के साथ लिख भेजिए हमें, फिल्म का नाम और उस गीत के बोल जो आप सुनना चाहते हैं। भेजना कहाँ है ये भी बता दूँ, व्हाट्सएप कर सकते हैं 9868867 पर, या फिर दोबारा से बताऊं 9868867 पर, या ईमेल कर सकते हैं fmgoldairdelhi@gmail.com पर। जी हाँ, fmgoldairdelhi@gmail.com। एक ही काम कीजिएगा, दोनों करने की जरूरत नहीं है, और बार बार तो बिल्कुल मत करिएगा। सिर्फ एक ही बार अगर आप मुझे मैसेज भेज देंगे तो काफ़ी है, और जितनी ज़्यादा बार आप भेजेंगे ना तो मैं आपका नाम लूँगी ही नहीं, क्योंकि आप जो बार बार मैसेज भेजते हैं उसमें उन लोगों के मैसेजेस ढूंढना मुश्किल हो जाता है जिन्होंने सिर्फ एक बार मैसेज भेजा है। तो कोशिश करिए, ईमानदार बनिए, और फिलहाल कुछ मैसेजेस को मैं शामिल कर लेती हूँ। उसके बाद किसकी पसंद का गीत सुनाऊंगी ये तो सुनकर ही पता चलेगा आपको। वेल, कौन सा गीत सुनाऊं? तो चलिए फिलहाल गीत तो मैं डिसाइड करती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको नाम बता देती हूँ किस किसने हमें मैसेजेस भेजे हैं। सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी ने शांति नगर सोनीपत से हमें लिखा है, अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवीएम जैन, मालियाना सरधना मेरठ से हमें लिख रहे हैं, मास्टर अशोक वर्मा जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र, शेख, मूसा भाईजान और भाई राजकुमार बुड़ाना के साथ, और सुदामा नगर खंडवासी लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश, जगताप का हमें मैसेज मिला है, धर्मेंद्र शेपा, कपिल, ईशान, पूजा, भोपालगढ़ राजस्थान से हमें लिख रहे हैं, और हमें लिखा है किसने, जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन, दीपांशु का मैसेज हमें मिला है, और कहाँ से मिला है हमें लिखा है इन्होंने, भाई बहुत ढूंढना पड़ता है, एक के नीचे एक नाम लिखिए ताकि आसानी से मैं पढ़ सकूं। और इसके अलावा हमारे पास मैसेज पहुंचा है सिद्धार्थ गुंडा ने, अर्चना, प्रणय प्रसिद्धि और हीरामन शिंडे का, ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से, और हमें लिखा है किसने, कल्पना ताई लोखंडे, शैलेश लोखंडे, प्रतीक्षा लोखंडे, स्वप्निल और रक्षिता लोखंडे ने, महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे के साथ हमें मिला है ये मैसेज किसका। देखिए, इतना खोजने के बाद भी आपका नाम मुश्किल से मिलता है। मृदुल राज शर्मा ने गाजियाबाद से हमें लिखा है, गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी, डॉक्टर प्रियंका, प्रशांत, प्रियम, बेबी मामिका और वाणी का हमें मैसेज मिला है नवाशहर पंजाब से, और हमें लिखा है सुरेश नारंग ने, आशा नारंग के साथ सहारनपुर से, साथ ही ये मैसेज मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ का, और उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खुरवाल, कमला रानी, गीतिका और भानु प्रकाश का मैसेज, संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत और भारत कमल का, कमल साहनी का पिंगावाला चौक गुरैया पंजाब से, जलंधर से हमें मैसेज पहुंचा है, और ये फजील का पंजाब से, भूषण खेरा, विशाल, विष्णु और लाडी का हमें मैसेज मिला है शलानी के साथ, वही बात कि एक के नीचे एक मैसेज नाम लिखिए ताकि मैं पढ़ पाऊं इसे, तिवांशी खेरा का भी हमें मैसेज मिला है, सुरेश मुलाडे, वर्षा मुलाडे, श्रद्धा और मानसी का मैसेज हमें पहुंचा है, कहां से नहीं लिखा, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा सिटी दीवाना का मैसेज हमें मिला, ये महेश अग्रवाल, मीना अग्रवाल का बहादुरगढ़ हरियाणा से मैसेज, कस्बा कन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी, फराज, फरहीन, फरहान, फारिया और ताहिरा का मैसेज, सुनील पाठक, कमल, दीपिका, गव्या मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक का मैसेज, अनारकली बाजार जगराओं से, और

लेटर हमें लिखा है ये तेलंगाना निजामाबाद से शेख अलाबख्श बेगम राबिया शेख शेख रहीम मुन्ना का मैसेज, और महाराष्ट्र से रुपेश संघई महेश संघई प्रगेश प्रितेश और पूरे संघई परिवार का मैसेज, सोनू सुरेश राजपाल पंकज काजल सीमा मानवी तन्वी लक्ष्य सोनी मोहिनी ऋतिक बलवीर सिंह का मुकेश कश्यप शीतल कश्यप के साथ मैसेज गांव दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से, और मेहर अरोड़ा ममता अरोड़ा कीर्ति अरोड़ा भूमिका का मैसेज श्री गंगानगर राजस्थान से, मोहम्मद कलीम अंसारी बेगम अंसारी अयान अंसारी उस्मान यासीन का मैसेज गंज टुंडवारा कासगंज से, और फरमान सलमान इरफान इसरार नरगिस खातून का मैसेज हमें मिला है उत्तर प्रदेश दुल्हापुर से। योगेश शर्मा ने फरीदाबाद से हमें लिखा है, कमल बैलूजा मधु सागर का मैसेज मजनू काटिला से, सतना एमपी से उमंग मलिक आकांक्षा मलिक और माही मलिक का मैसेज, सुदर्शन शाह पल्लवी प्रखर कुशल नीति सुरभि अश्विन मंगलाबेन राजेंद्र जी का मैसेज नेपा नगर मध्य प्रदेश से, संतोष भाकरे सुनैना सुकन्या और सविता का शाहजी नगर नांदेड़ महाराष्ट्र से, शंकरलाल जायसवाल गणेश लाल शुभम प्रसाद और दुर्गेश्वरी जायसवाल का हमें इताला महाराष्ट्र से मैसेज पहुंचा। नवाब अहमद भारती शबाना भारती अरहान अहमद सुफियान बल्लीमारान से हमें लिख रहे हैं, और फरमान सलमान इरफान इसरार का मैसेज उत्तर प्रदेश से। अनीता ने हमें अनीता फिल्म से लिखा है, नेमुआ सुपौल बिहार से हमें लिख रहे हैं, अपना नाम दोस्त क्लियर लिख दीजिए थोड़ा सा ताकि मैं पढ़ पाऊँ इसे आसानी से, और हमें लिखा है नबी हसन अब्बासी शहनाज नावेद हसन रसीद वारसी और सुहेल हसन। अनम और यशफ ने दरवाज़ा एटा से मारहरा दरवाज़ा एटा से सिकंदरा राव से मुनीब अब्बासी इशरत परवीन का मैसेज, और हमें लिखा भट्टीपुरा महोबा से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता ने। इसके अलावा शकुंतला यादव उग्रसेन यादव गरिमा ने नई दिल्ली से, पंकज मोहड़ अमरावती महाराष्ट्र से लिख रहे हैं, शमसुल कमर राही शाहीन फातिमा अदनान फैजान अनु का गंज डुंडवाड़ा से मैसेज, जामुन देवी साहू प्रेम पूजा दुष्यंत प्रांजल समीक्षा बीबी आराध्या का मैसेज हमें मिला है बबलू साहू के साथ, कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से, और तुलसी मस्कीन वीना मस्कीन आशीष राजा चैतन्य मेघा का मैसेज हमें, चंडीगढ़ से राहुल खुराना रचिता खुराना केशु खुराना धान खुराना का मैसेज, बिहारी कॉलोनी दिल्ली से भी आपके मैसेजेस मिले हैं। तो बहुत सारे मैसेजेस हैं, ज़रूर कोशिश रहेगी शामिल करने की सभी को, लेकिन फिलहाल जो गीत आप तक पहुँचाने वाली हूँ ये गीत हमें फरमाइश भेजी है किसने, ये गीत की फरमाइश हमें भेजी है सिद्धार्थ गुंडा ने, अर्चना गुंडा ने, प्रणय प्रसिद्धि हीरामन शेंडे ने, ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से। तो ये रहा आपकी पसंद का गीत सुमन कल्याणपुर जी की आवाज में।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

10:45 और 3 सेकंड हो चुके हैं और जल्दी जल्दी कोशिश कर रही हूँ आप सभी को शामिल करने की। इस ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मैं आपकी दोस्त आरजे रेखा क्रिस्टल वॉइस। और हमें किस किस ने मैसेजेस भेजे हैं तो चलिए बता दूँ आपको। हमें लिखा है नीरज अग्रवाल, सचिन अग्रवाल, डी

अलवी ने पश्चिम विहार दिल्ली से, और हमारे पास ये मैसेज पहुंचा है गांव फ्रांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, सौरभ डूडी और प्रमोद कुमार डूडी का। और इसके अलावा हमें लिखा है हेमा ने गुरुग्राम से, और मोहम्मद सईद अब्बासी, निकत परवीन अब्बासी, शाहनवाज सरफराज, फरदीन सुहान, अरजान अबान और पूरे परिवार ने बुलंदशहर मोहल्ला चौखुंडी से। और इसके अलावा हमारे पास ये मैसेज पहुंचा है वाइट फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव, दिवेंदु भूषण और संस्कृति पौरुष का। और इसके साथ साथ हमें ये मैसेज लिखा है कहाँ से, राजेंद्र कुमार सचदेवा ने भवानीगढ़ से, और ये भवपुर बसना से राधे श्याम देवांगन राजू नेहा चंपा का मैसेज, झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया और रीटा भाटिया का मैसेज हमें मिला, और ये हमें लिखा है नबी हसन अबासी, नहीं ये तो मैसेज हम लिख चुके हैं। और इसके अलावा हमारे पास ये मैसेज पहुंचा है नवाब अहमद भारती का बल्ली मारान से, शबाना भारती अरहान सुफियान के साथ। और हमें लिखा है महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी ने दिशा के साथ नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से, परवेज आलम ग्राम बलमी सिरसिया जिला पूर्वी चंपारण मोतिहारी बिहार से लिख रहे हैं। बस घर का पता लिखना बाकी रह गया था, बाकी तो पूरा लिख दिया है आपने। प्रदीप सलूजा, संगीता सलूजा ने जनकपुरी से हमें मैसेज पहुंचाया है, और हमारे पास और भी बहुत से मैसेजेस हैं, जैसे ये मैसेज हमें लिखा है किसने, सुनीता सुषमा ने पुणे से, और साथ में है सुनील। और इसके अलावा हमारे पास भाई बहुत मुश्किल से पढ़ पाती हूँ कई नाम, दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू का मैसेज हमें मिला है, और हमें लिखा है मनोहरलाल गांधी विजय नगर चाणक्य चौक गाजियाबाद से लिख रहे हैं। और इसके अलावा मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप का मैसेज, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज का मैसेज, और ये हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्र, नोखेलाल का भाटापारा छत्तीसगढ़ से, गांधी चौक बाड़मेर से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार का मैसेज, रामदेवरा से दिनेश चौहान, डागरी से बाबूराम जयपाल, खलीफों की बावड़ी से खुदाबख्श खलीफा का मैसेज, और पूर्वी चंपारण मोतिहारी बिहार से भी परवेज आलम का मैसेज, सिंह गोविंदपुरा सीकर से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंके शेखावत का मैसेज, रजाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान का मैसेज हमें मिला है राजस्थान हनुमानगढ़ टाउन से, भगवती प्रहलाद पुल प्रहलादपुर से हमें लिख रही हैं, नजफगढ़ जय विहार से शाहरुख फारूक, शबनम और शाहनाज का मैसेज, श्रीपाल गोयल बहादुरगढ़ हरियाणा से हमें लिख रहे हैं, शेरवानी स्कूल गुंजुंडवाड़ा से आफ्ताब अंसारी, रियाज मोहम्मद, अनवर लुबना और आलिया अंसारी का मैसेज, सतप्रकाश सनोठिया रोहिणी से हमें लिख रहे हैं, और इसके अलावा योगेश शर्मा फरीदाबाद से हमें लिखते हैं, प्रकाश गुगिया जागृति इंक्लेव से हमें मैसेज भेज रहे हैं, आसिफ सैफी मेरठ से हमें लिख रहे हैं, और ये मैसेज हमें लिखा है मधु बाला तिलांगपुरी कोटला दिल्ली से हमें लिख रही हैं, और रघुबीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो का हमें मैसेज मिला एलिजा नायाब और लड्डू के साथ। तो भाई आपके काफी सारे मैसेजेस और भी हैं हमारे पास, जरूर शामिल करूंगी, कोशिश है। फिलहाल एक गीत शामिल करती हूं, और इस गीत की फरमाइश हमें किसने भेजी है ये भी देख लेते हैं। जी, तो इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है मृदुल राज शर्मा ने गाजियाबाद से, ये रहा आपकी पसंद का गीत फिल्म इज्जत से।

और अब हमारे पास जल्दी से कुछ और मैसेजेस हैं, उन्हें भी शामिल कर लेती हूँ क्योंकि वक्त अब बहुत कम बचा है और चलते चलते एक गीत तो ज़रूर सुनाऊंगी मैं, कोशिश यही है। फिलहाल हमारे पास दिल्ली नांगलोई से मैसेज पहुँचा है राजेंद्र जटोलिया, उषा चारू का, और हमें लिखा है भाई बार बार आप मैसेज भेजते हैं तो मैं बार बार सामने वही मैसेजेस देख पा रही हूँ। संजय डिंगिया, नमन डिंगिया, अपार डिंगिया ने हमें गांव चाहौलदा बागपत से लिखा है। रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रेहान, समरीन परवीन, माहिरा नूर ने हमें लिखा है उत्तराखंड से, जसपुर से राजेंद्र, राजेश जैन, बिट्टू जैन और राजीव जैन, शुभचंद्र ने मुलापुर दाखा से हमें लिखा है, और खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल, पापा जी, नानक चंद्र मल्होत्रा का मैसेज, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू भाविक सिक्का का मैसेज, सादुल शहर राजस्थान से राम कुमार रिवाड़, चंद्रकला रिवाड़, और आपकी पसंद का गीत कोशिश है कि मैं सुनवाऊं ज़रूर, तो ये जो गीत मैं आप सुनवाऊंगी ये आप ही की पसंद का रहेगा। और इसके अलावा मास्टर खिल्लू परवेज बेगम, इमरान अनाज, नवाज़िश शेख, दानिश शेख, अमन अफरीदी और राधा नामदेव का लखनऊ से मैसेज, अहमद भाई फूलवाले, दुखनी सदफ, आरजू, जुही इकबाल फूलवाले, इमरान अहमद फूलवाले का मैसेज, छोटी बालिया करजत मुंबई से, कापसीड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से बिटिया आमना नसरीन, आमना परी, राबिया मंतशा, आशु अहमद वाले और समस पुल वाली फैमिली, सतीश अनेजा, बिमला अनेजा का चंडीगढ़ सिटी से हमें मैसेज मिला है। और अब वक्त ज्यादा नहीं बचा है, गाना आधा नहीं सुनवाना चाहती हूँ, इसलिए जल्दी से इस गीत को भी शामिल कर लेती हूँ। सुनीता यादव, सीमा यादव, नेहा यादव, प्रियंका यादव का गोल मार्केट दिल्ली से हमें मैसेज मिला है, चलते चलते जल्दी से, और हमें लिखा है और भी बहुत सारे लोगों ने तो जिनके नाम आज छूट गए हैं, कोई बात नहीं, फिर किसी रोज शामिल होंगे। तो ये गीत, ये रहा बचपन फिल्म से रफी साहब की आवाज में।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वासन दिया है कि भारत के खिलाफ म्यांमार की जमीन का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। दोनों नेताओं के बीच कल नई दिल्ली में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत का समर्थन दोहराया। प्रधानमंत्री ने म्यांमार में पूर्वोत्तर में संचालित आतंकी गुटों का मुद्दा उठाया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि म्यांमार के राष्ट्रपति ने भरोसा दिलाया कि भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ म्यांमार की धरती का इस्तेमाल नहीं होगा।
1: Both sides underscored the
2: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
1: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमेरिका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। गृह मंत्रालय ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिया है। इसमें आव्रजन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण और समय सीमा से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस संशोधन के अंतर्गत भारत आने के बाद 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी पंजीकरण कराया जा सकता है। इससे पहले 180 दिन की अवधि समाप्त होने के 14 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य था। उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने के आरोप में आजमगढ़ से एक युवक को गिरफ्तार किया है। दस्ते ने बताया है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और कुछ आतंकी संगठन भारत में आतंक फैलाने के लिए शहजाद भट्टी के नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे थे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं की प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। सीबीएसई ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। छात्रों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका ₹100 और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न ₹25 का भुगतान करना होगा। आज तेलंगाना का स्थापना दिवस है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर राज्य के लोगों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तेलंगाना को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परिश्रमी लोगों का साथ मिला है। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राज्य समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और जीवंत परंपराओं से संपन्न है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि तेलंगाना का इतिहास और गौरवशाली संस्कृति साहस, दृढ़ संकल्प और संघर्ष का प्रतीक है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज इटली के राष्ट्रीय दिवस पर वहां के लोगों को शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी और भी मजबूत होती रहेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और हिजबुल्ला संघर्ष रोकने पर सहमत हो गए हैं। श्री ट्रंप ने बताया कि उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से बातचीत की है और मध्यस्थों के जरिए हिजबुल्ला से भी संपर्क किया है। श्री ट्रंप ने बताया कि अब बेरूत की ओर सेना नहीं भेजी जा रही है और जो सैनिक रास्ते में हैं उन्हें वापस बुला लिया गया है। हिजबुल्ला ने कहा है कि यदि इसराइल की ओर से हमले बंद होते हैं तो वो भी हमला नहीं करेगा। घरेलू शेयर बाजार के संविधि सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 322 अंक गिरकर 73,945 पर, जबकि निफ्टी 153 अंक लुढ़ककर 23,229 पर कारोबार कर रहे थे। मौसम विभाग ने आज भीतरी कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सुनील वर्मा। Myanmar President U Min Aung Hlaing has assured Prime Minister Narendra

कहते हैं घूमना फिरना सेहत के लिए ही नहीं दिमाग के लिए भी बहुत अच्छा होता है और मूड के लिए भी। तो अगर आप भी घूमना फिरना पसंद करते हैं तो बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात है और करना भी चाहिए। और अगर आपको समय नहीं मिलता और आप ऐसा कुछ प्लान नहीं कर पाते हैं तो हमारे साथ आप तस्वीर के सफर में तो जुड़ ही सकते हैं। आपको घर बैठे हम अलग अलग जगहों की सैर कराते हैं और कभी अगर आपका प्लान बने तो आप इन जगहों पर जा भी सकते हैं घूमने के लिए। पर पहले जान लेना बहुत जरूरी है ना कि यहाँ पर आखिर देखने के लिए क्या है। भारत बहुत बड़ा है दोस्तों और यहाँ पर देखने के लिए न जाने कितनी ही खूबसूरत चीजें हैं कि अगर आप इन्हें देखना शुरू करें तो शायद एक जन्म भी कम पड़ जाए, है ना। तो फिर आज मैं आपको जिस जगह पर लेकर चल रही हूँ वो भी जरूर बताऊंगी। पहले बता दूं कि आप सुन रहे हैं तस्वीर आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। 11:12 और 3 सेकंड हो चुके हैं और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे रेखा क्रिस्टल वॉइस। तो तस्वीर के सफर में आज मैं आपको ले चलूंगी राजगीर, बौद्ध परिषदों का मेजबान, बिहार का ऐतिहासिक स्थल। जी हां, राजगीर या राजगृह जैसे कि ये जगह अपने अच्छे दिनों में जानी जाती थी, मगध महाजनपद की सबसे पहली राजधानी हुआ करती थी जो बाद में गंगा नदी के किनारे बसे पाटलिपुत्र शहर में स्थानांतरित की गई। आज ये एक छोटा सा नगर है जो पटना से दक्षिण पूर्व दिशा में 60 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। 7 पहाड़ियों से घिरी ये जगह इन्हीं पहाड़ियों से घिरी घाटी में बसी है। इसका शाब्दिक अर्थ है राज परिवारों का निवास स्थान, यानी राजगीर या राजगृह। अगर मैं बात करूं इस जगह के इतिहास की तो ऐतिहासिक दृष्टि से राजगीर जैनों, बौद्धों, हिंदुओं और इतिहास के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि बुद्ध अनेक बार राजगीर की यात्रा कर चुके हैं। यहां पर आने का उनका प्रमुख उद्देश्य था बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करना। यही वो जगह है जहां पर उन्होंने अपने महत्वपूर्ण उपदेशों का व्याख्यान किया था। इन्हीं उपदेशों में से एक उपदेश ऐसा था जिसने यहां के पूर्व महाराज बिंबिसार को और बाकी बहुत से लोगों के साथ बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित किया। माना जाता है कि भगवान महावीर ने भी राजगीर में 14 वर्षा ऋतु या चौमास बिताए थे और यहीं पर उन्होंने अपना पहला उपदेश भी दिया था। राजगीर में जैनों का एक श्वेतांबर और एक दिगंबर मंदिर भी है। इस शहर की जड़ें महाभारत तक फैली हैं, जिसकी वजह से या जिसके अनुसार कहा जाए ये जरासंध की नगरी हुआ करती थी। कहते हैं इस शहर में आज भी जरासंध का अखाड़ा मौजूद है जहां पर पहलवान अपना अभ्यास करते हैं। राजगीर वो जगह है जहां सम्राट अशोक ने अपने प्रसिद्ध स्तंभ का निर्माण किया था जिस पर हाथी का चिन्ह बना हुआ है। और यहां पर इस स्तंभ की मौजूदगी इसी बात की ओर संकेत करती है कि ये जगह सम्राट अशोक के शासनकाल में भी यानी 2400 से भी अधिक साल पहले भी बहुत खास थी। कुछ लेखों के अनुसार यहां से शासन करने वाले मगध के अंतिम शासक बिंबिसार को उन्हीं के पुत्र अजातशत्रु द्वारा यहां की जेल में बंदी बनाकर रखा गया था, जिसके बाद मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया और वो जेल आप आज भी वहां के दुर्ग की दीवारों के सहारे खड़ी देख सकते हैं। बहुत खास है राजगीर इतिहास के तौर पर भी और यहां पर धार्मिक तौर पर भी अगर आप देखें तो सचमुच आज भी यहां लोगों का तांता लगा रहता है। अभी यहां जाने की बात मैंने क्यों की है, इसके पीछे भी एक खास वजह है और वो वजह है मलमास मेला। मलमास मेला चल रहा है राजगीर में, यानी ये जगह बहुत खास तौर पर जानी जाती है मलमास मेले के लिए। क्या है ये मेला और क्यों खास है जरूर बताऊंगी सब कुछ इस बारे में, लेकिन फिलहाल शुरू करते हैं इस सफर को इस प्यारे से गीत के साथ। तो ये रहा धनवान फिल्म से लता जी और सुरेश वाडेकर साहब की आवाज में खूबसूरत गीत आपके लिए।

0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
1: कभी सुनहरी यादें, कभी रेडियो के वो अनमोल किस्से,
0: और कभी आवाजों के पीछे छुपे संघर्ष की कहानी। सुनिए आकाशवाणी के वरिष्ठ प्रसारण कर्मियों से खास बातचीत,
1: जहां वे साझा करेंगे अपने अनुभव, यादगार पल और ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया।

0: नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर हरविंदर मांकड़, एक राइटर, एक कार्टूनिस्ट और फिल्म डायरेक्टर। आप मुझे मेरे करेक्टर मोटू पतलू से अच्छी तरह जानते होंगे। पिछले 50 साल से मैं उसे लिख रहा हूं और ड्रा भी कर रहा हूं और टीवी पे भी आ रहे हैं। संपत चंपत, शेख चिल्ली और ना जाने ऐसे 500 करेक्टर्स आप सबके मोहब्बत और प्यार से इस दुनिया में मशहूर हैं। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं आकाशवाणी के बारे में। जी हाँ, मेरा बचपन जिसके साथ बीता, आज 90 साल हो गए हैं आकाशवाणी अपना 90 वर्षगांठ मनाने जा रही है। मुझे याद है जब हम छोटे हुआ करते थे तो मेरे घर में एक रेडियो हुआ करता था, उसके अंदर एक प्लास्टिक की तार जैसी एक लाइन होती थी और एक गोल स्विच होता था जिसको हम मैनुअल घुमाते थे और वो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज को पकड़ता था। लेकिन मुझे आकाशवाणी की जो सबसे सुंदर लगती थी, सुबह सुबह की जो सिग्नेचर ट्यून आती थी सबसे पहले, स्टार्ट होने से पहले, यकीन माने कि मैंने एक एक प्रोग्राम को नोट किया हुआ था, जैसे कि 9 बजे ये आएगा, 6 बजे ये आएगा। मुझे आज तक याद है कि 9 बजे हवा महल आया करता था, 7 बजे फौजी भाइयों का फरमाइशी प्रोग्राम आता था, चित्रमाला आता था और इसके अलावा बहुत सारे और बच्चों के कार्यक्रम, बड़ों के कार्यक्रम, विविध भारती का अपना एक अलग मजा था क्योंकि टीवी होता नहीं था, रेडियो एकमात्र साधन था। तो एक ट्रांजिस्टर मेरे पापा ने मेरे को लेके दिया था जो मैं रात को हवा महल जिसपे सुना करता था। समय बीता, मुझे याद है ये 1977 की बात है, मैं 12 या 13 साल का था। तो उस समय धर्मवीर फिल्म रिलीज हुई थी मनमोहन देसाई की, और जहां तक मुझे लगता है पहला स्पॉन्सर्ड सॉन्ग, प्रायोजित गाना रोज सुबह 9:30 के आसपास बजता था मोहम्मद रफी की आवाज में, ओ मेरी महबूबा, ओ मेरी महबूबा। तो मैं कहीं भी खेल रहा होता था, क्रिकेट खेलते थे, लेकिन जैसे ही मुझे मालूम होता था कि अब 9:30 हो गए, मैं भागता हुआ घर आता था और मोहम्मद रफी साहब का वो गीत, ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या, ये सुना करता था, इतना पसंद था मुझे। और बहुत सारे किस्से आकाशवाणी के साथ मेरे, हर दम रेडियो का दीवाना हुआ करता था मैं। बेशक आज टीवी आ गया है, बेशक आज बहुत कुछ आ गया, मगर आज भी मेरी जो पसंद है वो विविध भारती होता है या आकाशवाणी का गोल्ड होता है, क्योंकि पुराने गाने बजाते हैं, संस्कारी गाने बजाते हैं और बेहतरीन ढंग से इसमें परिभाषा से बोला जाता है, कोई उलझुल नहीं बोलते, पब्लिक को एक अच्छा संदेश देते हैं। तो मैं हमेशा कहूंगा आकाशवाणी, अभी तो 100 साल आएंगे, आप 100वीं वर्षगांठ मनाएं, फिर 1000वीं मनवाएं, खूब रहे आकाशवाणी, जैसा कोई हो नहीं सकता। आई लव यू आकाशवाणी, हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं।
1: किसी एक की बात नहीं है, आई लव यू आकाशवाणी सभी की बात है और हम सभी आकाशवाणी से बहुत प्यार करते हैं। देखिए ना, तभी तो 24 घंटे हम और आप साथ साथ रहते हैं। 11:23:58 हो चुके हैं और तस्वीर की इस यात्रा में आज हम निकले हैं राजगीर की यात्रा पर। जी हाँ, राजगीर वो खूबसूरत जगह जहाँ पर अभी चल रहा है मलमास मेला। आप ये मलमास मेला क्या है ये भी बताऊंगी और यहाँ पर और क्या घूम सकते हैं आप वो भी बताऊंगी। जुड़े रहिए मेरे साथ। राजगीर में आयोजित होने वाला ऐतिहासिक मलमास मेला 2026 का भव्य आयोजन चल रहा है और ये मेला 17 मई से 15 जून तक निर्धारित है, यानी 17 मई से ही शुरू हो चुका है और इसे बिहार का मिनी कुंभ भी कहा जाता है। इस दौरान देश विदेश से लाखों श्रद्धालु राजगीर के पवित्र कुंडों में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचते हैं। और अगर मैं बात करूं इस जगह की, तो वही 17 मई को, जैसा कि मैंने कहा, ये मेला शुरू हो चुका है। माना जाता है कि हर 3 साल में पड़ने वाले अधिक मास यानी मलमास के दौरान, ये मान्यता है कि सनातन धर्म के 33 कोटि देवी देवता राजगीर में निवास करते हैं। यहाँ स्नान और दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखते हुए यहाँ पर कई इंतजाम किए गए हैं प्रशासन की तरफ से, जैसे कि जर्मन हैंगर पंडाल, स्वास्थ्य शिविर, सुव्यवस्थित पार्किंग की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो अगर आप यहाँ जाने का प्लान कर रहे हैं तो बिल्कुल आसानी से यहाँ जा सकते हैं और इस जगह को घूम सकते हैं। बहुत सारी सुविधाओं का ख्याल रखते हुए इस

मेले का आयोजन किया गया है। मेले के दौरान ब्रह्मकुंड जो यहाँ का राजगीर का ब्रह्मकुंड है, इसमें चार प्रमुख शाही स्नान होते हैं, जिनमें से मुख्य स्नान हाल ही में संपन्न हुए हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं इन स्नानों की, तो भाई ये जो 31 मई का दिन है, यानी कल का जो दिन था, इस दिन दूसरा शाही स्नान हुआ था। और जैसा कि मैंने कहा कि ये मेला शुरू हो चुका है 17 मई से, तो पहला स्नान उस दिन हुआ। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं 5 जून की, तो पंचमी स्नान इस दिन यहां पर होगा। 11 जून को तीसरा शाही स्नान होगा, जो कि पुरुषोत्तमी एकादशी के दिन पड़ेगा। और 15 जून को, जो कि आने वाला 15 जून है, अमावस्या स्नान और देवताओं का विसर्जन, यानी मेले का समापन इस दिन होगा। तो अगर आप यहां पर जाने का सोच रहे हैं, तो ये तिथियां भी आप प्लान कर सकते हैं, जब आप यहाँ पर जाकर इस जगह को देख सकते हैं, यहाँ स्नान का आनंद ले सकते हैं और यहाँ इस खूबसूरत मेले का हिस्सा बन सकते हैं, इस आयोजन का हिस्सा बन सकते हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं बिहार के नालंदा जिले के विश्व प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर

तो अगर आप यहाँ पर जाने का सोच रहे हैं तो ये तिथियां भी आप प्लान कर सकते हैं, जब आप यहाँ पर जाकर इस जगह को देख सकते हैं, यहाँ स्नान का आनंद ले सकते हैं और यहाँ इस खूबसूरत मेले का हिस्सा बन सकते हैं, इस आयोजन का हिस्सा बन सकते हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ बिहार के नालंदा ज़िले के विश्व प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर की, तो यहाँ पर ये एक महीने तक चलने वाला लगभग ये मलमास मेला जो है वो शुरू हुआ था, जैसा कि मैंने कहा 17 मई को बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने इसका उद्घाटन किया था। समागम का आधिकारिक उद्घाटन हुआ इस सुप्रसिद्ध धार्मिक समागम का। इसके अलावा उद्घाटन समारोह से पहले ब्रह्मकुंड परिसर स्थित यज्ञशाला में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पवित्र ध्वजारोहण और विशेष पूजा कार्यक्रम भी आयोजित किए गए यहां पर, जिसमें मुख्यमंत्री खुद शामिल हुए। और इस उद्घाटन के साथ ही इस पवित्र नगरी राजगीर में देश विदेश से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा है, जो अगले ही एक महीने तक आस्था की डुबकी यहां पर लगाएंगे। कहा जाता है, अगर मैं बात करूं मलमास की, तो वायु पुराण के विवरण के अनुसार मलमास के दौरान राजगीर के पवित्र सरस्वती नदी और ब्रह्मकुंड में एक दिन का स्नान गंगा नदी में वर्ष भर स्नान करने के समान पुण्यदायी माना जाता है। और इसी वजह से इस पावन महीने में देश के कोने कोने से साधु संत महात्मा और आम श्रद्धालु मोक्ष और आत्मशुद्धि की कामना के लिए राजगीर पहुंचते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ये बिहार का मिनी कुंभ कहा जाता है, जिसे मलमास मेला भी हम कहते हैं। बुधवार 27 मई से शुरू हुआ यहाँ पर पहला स्नान जो था। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर शाही स्नान की शुरुआत भी हुई, जो काफ़ी सारे साधु संतों महंतों और अलग अलग अखाड़ों ने देश विदेश से आए श्रद्धालुओं ने यहाँ पर स्नान करके इसकी शुरुआत की। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये जो जगह है, ये राजगीर मलमास मेला, शुरुआती शाही स्नान जो यहाँ पर शुरू हुआ, इसके बाद अलग अलग अखाड़ों ने जैसे कि धार्मिक रीति रिवाजों के साथ ध्वज पताकाओं और जयघोष के साथ स्नान यात्रा में वो शामिल हुए। और यहाँ पर खाक चौक, बड़ी संगत, धनिया पहाड़ी संगत, रजौली संगत, कैलाश आश्रम, कबीरपंथी, फलाहारी बाबा संप्रदाय, ऐसे बहुत से संप्रदाय हैं जिनके अखाड़ों ने, संतों ने यहाँ पर भाग लिया। बहुत से जत्थों के आगमन से पूरा मेला जो क्षेत्र है वो इसके रंग में रंग गया, यहाँ के धार्मिक रंग में रंग गया। और सचमुच ही बहुत ही देखने लायक अनुभव रहा। लेकिन अभी भी अगर आप यहाँ नहीं पहुँचे हैं और अगर यहाँ पर जाएंगे तो ये मेले का आयोजन अभी भी जारी है, आप यहाँ पर अब भी इस खूबसूरत आयोजन का आनंद ले सकते हैं। बहुत कुछ बताऊंगी इस बारे में, लेकिन उससे पहले गीत आप तक पहुँचाती हूँ। ये रहा लता जी की आवाज़ में ये खूबसूरत गीत, और फिर आगे इस जगह के बारे में और भी बहुत कुछ है जानने के लिए।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10 plus 2 BTEC cadet entry scheme, permanent commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a Viksit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.
4: राजगीर की यात्रा पर निकले हैं आप और हम, साथ साथ 11:34 हो चुके हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आंशरिका क्रिस्टल वॉइस, और मैं आपको घुमा रही हूं राजगीर और राजगीर का मलमास मेला। जी हां, मलमास मेला जो यहां पर लगा हुआ है, परंपरा के अनुसार साधु संतों का पहला स्नान गुरु नानक कुंड में हुआ और इसके बाद संतों का जत्था सरस्वती नदी सप्तधारा होते हुए मुख्य ब्रह्मकुंड पहुंचा, जहां पवित्र स्नान और विशेष पूजा अर्चना के साथ अनुष्ठान संपन्न किया गया। स्नान के दौरान श्रद्धालुओं ने भी पवित्र कुंडों में आस्था की डुबकी लगाकर परिवार की सुख समृद्धि, आरोग्य और मंगल कामना की। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, यहां पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से चाक चौबंद चौकस इंतजाम किए गए हैं, श्रद्धालुओं को यहां पर किसी तरह की परेशानी ना हो, इस बात का ख्याल रखते हुए इस मेले की पूरी तैयारियां की गई हैं। तो अगर आप यहां जा रहे हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। किसी भी तरह की अव्यवस्था को रोकने के लिए पूरे कुंड परिसर, मेला क्षेत्र और प्रमुख मार्गों पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए लगातार निगरानी रखी जा रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल, दंडाधिकारी और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। इसके अलावा श्रद्धालुओं की सहायता और मार्गदर्शन के लिए आपदा मित्र और विकास मित्र कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण देकर सेवा में लगाया गया है। ये कर्मी श्रद्धालुओं को सही रास्ता बताने, भीड़ नियंत्रण में सहयोग करने और जरूरत पड़ने पर सहायता उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। 15 जून तक चलने वाले इस मेले में राजगीर के 22 पवित्र गर्म जल कुंडों और 52 धाराओं में स्नान का विशेष महत्व है। इस दौरान 3 शाही स्नान समेत कई धार्मिक अनुष्ठान और आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। यहां पर मेले में बिहार सहित देश के अलग अलग राज्यों के अलावा नेपाल

और श्रीलंका से भी साधु संत और श्रद्धालु यहां पहुंचे हैं। पर्यटन विभाग और नालंदा जिला प्रशासन द्वारा पानी की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, स्वास्थ्य शिविर, प्रकाश व्यवस्था, नियंत्रण कक्ष, साफ सफाई और आपातकालीन सेवाओं की व्यापक व्यवस्था की गई है। पहले शाही स्नान के साथ आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या और भी बढ़ने वाली है और राजगीर एक बार फिर धार्मिक आस्था, आध्यात्मिक ऊर्जा और सांस्कृतिक विरासत का केंद्र बन रहा है। तो आपको यहां पर एक बार तो जरूर जाना चाहिए आस्था की इस डुबकी में अपने आप को सराबोर करने के लिए। आस्था के इस महापर्व में आने वाले श्रद्धालुओं और बच्चों के मनोरंजन के लिए यहां मैदान में व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं। इस बार मेले में बड़े बड़े आधुनिक झूले, सर्कस, जादूगर के शो और भव्य थिएटर्स लगाए गए हैं जो शाम के समय आकर्षण का मुख्य केंद्र होंगे। और इसके अलावा सुरक्षा के मोर्चे पर जिला प्रशासन ने मेला क्षेत्र में आसमान में ड्रोन, हॉट एयर बलून और पैराग्लाइडर्स जैसी उड़ने वाली वस्तुओं पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। इसके अलावा भीड़ नियंत्रण के लिए जर्मन हैंगर पंडाल, रेस्क्यू लेन, मुफ्त मेडिकल कैंप, सीसीटीवी निगरानी और श्रद्धालुओं के लिए बेहद सस्ती दरों पर भोजन की व्यवस्था भी यहां पर की गई है। सस्ती रोटी काउंटर्स ऐसे लगाए गए हैं जहां पर आपको बहुत ही वाजिब दामों पर आसानी से भोजन की व्यवस्था मिल जाएगी। इसके अलावा गर्मी को देखते हुए भी जिला प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए करीब 2000 से ज्यादा कूलर भी यहां लगाए गए हैं ताकि मेले में आने वालों को गर्मी से भी राहत मिल सके। और भी बहुत कुछ है राजगीर में घूमने के लिए इस मेले के अलावा भी, तो वो भी सब कुछ मैं आपको जरूर बताऊंगी, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ इस सफर में रहना होगा। फिलहाल ये गीत आशा जी की आवाज़ में आपके लिए, उसके बाद आगे क्या है इस यात्रा में जरूर बताऊंगी।

दोस्तों राजगीर की सैर पर निकले हैं हम और यहाँ पर न सिर्फ ये मेला बल्कि बहुत सारी ऐसी प्लेसेस हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं इन जगहों की तो जैसे कि विश्व शांति स्तूप है यहाँ पर। आज विश्व शांति स्तूप राजगीर का सबसे प्रसिद्ध स्थल बन गया है जो एक पहाड़ी के ऊपर बसा है और यहाँ पर पहुंचने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है रोप वे यानी रस्सी वाला रास्ता और इसी रस्सी के द्वारा आप उस स्तूप तक पहुंच सकते हैं। ये रोप वे बहुत ही साधारण है जिसमें बैठने के लिए कुर्सी है जिसमें एक समय पर एक ही व्यक्ति बैठ सकता है। इसे एक लोहे की रॉड के से ऊपर की ओर मजबूत रस्सी से जोड़ा गया है और ये किसी एडवेंचर राइड से कम नहीं लगता। रोपवे की सवारी लगभग 12 मिनट की है और इसी बीच अगर अचानक से कुछ ऐसा आपको दिखाई दे जो बहुत ही खूबसूरत हो, प्राकृतिक नजारा हो, तो आप हैरान मत होइएगा क्योंकि ये सचमुच इसीलिए बनाया गया है ताकि आप यहाँ पर घाटी के ऊपर से आसमान के बीच लटकते हुए यहाँ के खूबसूरत नज़ारों को देख सकें। और अगर आप इन बातों की इन नज़ारों की बात करें तो यहाँ पर सचमुच ये सवारी बहुत ही यादगार और एडवेंचरस होने वाली है आपके लिए। विश्व शांति स्तूप एक विशाल स्तूप है जो धुंधले से सफेद रंग का है और पर बुद्ध की स्वर्णिम प्रतिमाएं हैं जो उनके अलग अलग मुद्राओं को दर्शाती है और ये स्तूप जापानी लोगों द्वारा बनाया गया था। आज भी यहाँ पर एक जापानी साधु रहते हैं जिन्हें फूजी बाबा के नाम से जाना जाता है और जो इस स्तूप और यहाँ के मंदिर की देखरेख करते हैं। इस जगह की बहुत ही अच्छे से देखरेख की जाती है। यहाँ पर आप आकर आपको एक अलग ही तरह की खुशी और शांति महसूस होगी जिसकी जरूरत आज हम सभी को है। हम एक शांत माहौल चाहते हैं, शांति की तलाश करते हैं, तो आपको एक बार जरूर यहाँ पर जाना चाहिए। यहाँ पर बहती हुई धीमी धीमी हवा के साथ फहराते यहाँ पर लगे रंग बिरंगे ध्वज इस जगह को और भी रंगीन और जीवंत बना देते हैं। यहाँ का वातावरण कभी भी सुस्त नहीं होता और आपको यहाँ कभी उबाऊपन महसूस नहीं होता। तो एक बार आपको अपने जीवन में इस जगह की यात्रा पर जरूर जाना चाहिए। अगर मैं बात करूं सोन भंडार की गुफाओं की तो राजगीर की सोन भंडार की गुफाएं आपको इस जगह से जुड़ी कहानियां बताती हैं। कहा जाता है कि इन गुफाओं के पीछे स्थित पहाड़ी स्वर्ण से जड़ी हुई है और इन्हीं में से किसी एक गुफा के भीतर वहां तक पहुंचने का दरवाजा है। इस दरवाजे के पास की दीवार पर शंख लिपि में एक मंत्र लिखा है जिसका अर्थ है अब तक नहीं पता है। कहते हैं कि जब उस मंत्र का अर्थ पता चलेगा और उसका उच्चारण होगा तभी ये दरवाजा खुल पाएगा जिससे कि उसमें छिपे स्वर्ण का पता लगाया जा सकता है। ऐसी कई किंवदंतियां इस जगह से जुड़ी हैं। ये भी कहा जाता है कि अंग्रेजों ने जिन्होंने इन सारी गुफाओं की खोज की थी इस दरवाजे को खोलने की सारी कोशिशें की थी लेकिन सब कुछ व्यर्थ था। इन गुफाओं की दीवारों पर कुछ और भी नक्काशी का काम दिखाई देता है जो भारत में पत्थर पर नक्काशी के शुरुआती दौर को प्रदर्शित करता है और इनमें से एक गुफा की बाहरी दीवारों पर जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं भी आप देख सकते हैं। शिलालेखों के अनुसार जैन साधुओं का मानना है कि इन गुफाओं की खोज तीसरी से चौथी शताब्दी के दौरान हुई थी और ये गुफाएं दुमंजिला हुआ करती थी लेकिन अब ऊपर की मंजिलों तक पहुंचना नामुमकिन है। 20वीं शताब्दी के शुरुआत में अगर मैं कहूं तो यहां पर व्यापक भूकंप आया और जिसकी वजह से इन संरचनाओं के बहुत से हिस्सों को काफी नुकसान पहुंचा था। आप अगर राजगीर की यात्रा पर जा रहे हैं तो यहाँ पर एक और जगह है जिसे मनियार मठ के नाम से जानते हैं। इसे भी आप देख सकते हैं। ये एक अष्टकोणी मंदिर है जिसकी दीवारें गोलाकार हैं और इन गोलाकार दीवारों में नियमित अंतर की दूरी पर कई आले बने हुए हैं जिनमें प्लास्टर से बनी कई हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां और प्रतिमाएं स्थापित हैं। इनमें से ज्यादातर मूर्तियां आज विस्थापित हो गई हैं। आप मंदिर के आलों के कोनों और छोरों पर इसके कुछ निशान देख सकते हैं। मनियार मठ के परिसर में आप अलग अलग राजकुलों की छाप भी देख पाएंगे जैसे गुप्त राजकुल का धनुष जो आज पुराने राजगीर के बीचों बीच स्थित है और ये महाभारत काल से जुड़ा हुआ माना जाता है। गर्म पानी के स्रोत भी हैं राजगीर में जिन्हें आप देख सकते हैं। 22 कुंड हैं यहाँ पर और 52 छोटी छोटी नदियां हैं जिनके नाम भी यहाँ एक जगह लिखे आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ पर भी जा सकते हैं जिनके बारे में ये मान्यता है कि उनमें रोग निवारण शक्तियां हैं और कई गर्म पानी के स्रोत भी हैं जहां पर आप जाकर आनंद ले सकते हैं इन स्रोतों

का और इस तरह के स्रोत हैं ये, जहां पर कहा जाता है कि औषधीय गुण पाए जाते हैं जो कई बीमारियों को दूर करने की ताकत रखते हैं। यहां का सबसे गर्म स्रोत ब्रह्मकुंड है, जिसके पास में ही लक्ष्मी नारायण का मंदिर है। जितने भी लोग यहां आते हैं वो सभी इस कुंड में स्नान करने के बाद इस मंदिर के दर्शन करते हैं। आप चाहें तो टमटम घोड़ा गाड़ी का भी आनंद ले सकते हैं। राजगीर में घूमते वक्त आप अपने आसपास नजर आते रंगीन और ऊंचे ऊंचे तांगों को बिल्कुल अनदेखा नहीं कर सकते। यहां के तांगे बहुत ही आकर्षक होते हैं और इन तांगों का एक खास अड्डा होता है जहां पर इन्हें खड़ा किया जाता है, जिसे टमटम पड़ाव कहा जाता है। और यहां पर कोई भी तांगा किराए पर लेकर शहर में जहां चाहे आप घूम सकते हैं। यहां का हर तांगा सुंदर रूप से सजाया गया होता है और हर तांगे का अपना एक नाम होता है। सजावट के साथ इन तांगों में घुंघरू या फिर छोटी छोटी घंटियां बांधी जाती हैं। जब भी तांगा चलता है तो घुंघरू एक अलग ही तरह की ध्वनि देते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत लगती है सुनने में। जैसा कि अभी आपने सुना ना इस गीत में, मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, तो उसमें भी अगर आपने महसूस किया हो तो घोड़े की टापों जैसी आवाज को इस्तेमाल किया गया है, तो वो भी संगीत का एक खूबसूरत धुन तो जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं जब घोड़े चलते हैं और उन पर घंटियां बजती हैं तो ये सचमुच ऐसी ही ध्वनि महसूस होती है। और यहाँ के सभी तांगे एक जैसे हैं लेकिन उनका श्रृंगार जो है वो अलग अलग है, बहुत ही लुभावने लगते हैं। इस शहर में कम से कम गाड़ियां हों जिससे प्रदूषण भी नियंत्रण में रह सके, इसी उद्देश्य से इन तांगों को यहाँ पर जगह दी गई है। और इसके अलावा यहाँ के नज़ारे, जब आप इन पे सवारी करते हैं तो सचमुच आपका दिल जीत सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ तो और भी बहुत सारी प्लेसेस हैं यहाँ देखने के लिए, लेकिन अगर वक्त बचा तो ज़रूर बताऊँगी। फिलहाल एक गीत आप तक पहुँचाती हूँ जिसका इंतज़ार आप बहुत देर से कर रहे हैं। अभी इससे पहले आपने गीत सुना था ना, वो था नया दौर फिल्म से रफ़ी साहब और आशा जी की आवाज़ में, और अब ये गीत गाइड फिल्म से लता जी की आवाज़ में।

तो भाई आपको जल्दी जल्दी से बता दूं, और भी बहुत सारी प्लेसेस हैं यहाँ पर देखने के लिए। कांच का पुल है, राजगीर में घूमने के लिए बेहतरीन जगहों में से एक है, बहुत आकर्षक है, अलग वास्तुशिल्प चमत्कार है ये। और पुल की जो लंबाई है वो लगभग 85 फीट चौड़ी है, 6 फुट लंबी है, और अपने आप में एक नेचर सफारी पार्क के अंदर स्थित ये पुल बहुत ही खास है। आप चाहे तो वेणु वन जा सकते हैं। 2500 साल पूर्व भगवान बुद्ध को उपहार स्वरूप दिया था राजा बिंबिसार ने ये वन, ये भी अपने आप में बहुत खास है, इसे भी आपको जरूर देखना चाहिए। साइक्लोपियन दीवार है जो कि 4 मीटर चौड़ी है और 2500 साल पुरानी है। इसकी लंबाई लगभग 40 किलोमीटर है और ये शहर को घिरे हुए है, तो ये भी आपको जरूर देखनी चाहिए। मौर्यों द्वारा शहर को मजबूत बनाने के उद्देश्य से इन दीवारों का निर्माण करवाया गया था। और अगर मैं बात करूं तो हॉट स्प्रिंग्स, राजगीर में प्रचुर मात्रा में गर्म पानी के झरने हैं, ये भी आप देख सकते हैं, इनके भी स्नान का आप आनंद ले सकते हैं। और इसके अलावा राजगीर में घूमने के लिए प्रमुख स्थानों में से एक इन्हें माना जाता है। इनका संबंध महावीर और भगवान बुद्ध के साथ प्राचीन भारत से भी जुड़ा हुआ है। घोड़ा कटोरा झील है यहाँ पर, जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। पर्यटक इसे राजगीर के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक मानते हैं, क्योंकि इसकी पहली झलक ही दिल जीत लेती है और झील बहुत ही खूबसूरत दिखती है। इसके चारों ओर घूमना, मनमोहक तस्वीरें लेना आपके लिए सचमुच बहुत खास होगा। सिलाव का खाजा एक जगह है, यहाँ पर भी आप खाने के लिए जा सकते हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ये सिलाव का खाजा एक तरह की डिश है जो छोटी सी जगह है यहाँ पर मिल जाती है खाने के लिए। और मैं अगर बात करूँ तो बिहार का एक तरह का मीठा और नमकीन पदार्थ है ये, जो कि बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ बिहारी लोगों का सबसे पसंदीदा खाद्य पदार्थ इसे माना जाता है। जब भी आप इस शहर से गुजरते हैं तो आपको यहाँ हर जगह सिर्फ खाजा की दुकानें दिखाई देंगी। अगर आप कभी यहाँ गए हैं तो इस स्वादिष्ट व्यंजन का लुत्फ ज़रूर लीजिएगा। ये एक राजगीर नालंदा के बीच एक छोटी सी जगह है सिलाव, यहाँ पर आपको आसानी से मिल जाता है। और अगर मैं बात करूँ इस जगह की तो अपना धार्मिक ऐतिहासिक महत्व तो है ही। विश्व शांति स्तूप, गर्म जल के कुंड, नेचर सफारी, ग्लास ब्रिज, बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर देख सकते हैं आप। राजगीर महोत्सव यहाँ का एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव है जो पर्यटन के लिहाज से यहाँ पर लोगों को आकर्षित करता है, तो ये भी आपको एक बार जरूर इसमें शामिल होने की कोशिश करनी चाहिए। अगर मैं बात करूँ हरियाली और शांत वातावरण की, तो यहाँ का वातावरण जो है वो लोगों को बहुत पसंद आता है और इसीलिए लोग यहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं और साल भर यहाँ पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। हाँ, अब आपको बता दूं कि यहाँ पहुँचना कैसे है। अगर आप बाय एयर यहाँ पर पहुँचना चाहते हैं तो गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो यहाँ का नज़दीकी हवाई अड्डा है, यहाँ पर आप आसानी से पहुँच सकते हैं। और गया से टैक्सी या बस आसानी से मिल जाती है जो लगभग 78 किलोमीटर की दूरी पर है, तो आप यहां से आगे की यात्रा कर सकते हैं। अगर आप ट्रेन से यहां जाएं तो राजगीर रेलवे स्टेशन है। पटना और बिहार के अन्य प्रमुख शहरों से राजगीर के लिए सीधी ट्रेनें चलती हैं, जैसे बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस जो पटना से लगभग 2 घंटे में पहुंचाती है यहां पर। और इसके अलावा कनेक्टिविटी देश के बाकी हिस्सों से भी काफी अच्छी है इस जगह की। अगर मैं बात करूं बाय रूट यहां पहुंचने की, तो बिहार राज्य पर्यटन निगम और निजी बसें पटना, नालंदा और बाकी शहरों से राजगीर के लिए चलती हैं। कैब और टैक्सी भी आपको आसानी से उपलब्ध है यहाँ पर। लगभग 110 किलोमीटर की दूरी के लिए पटना से राजगीर के लिए कैब आसानी से मिल जाती है। और यहाँ जाने का सबसे अच्छा समय अगर मैं कहूँ तो अक्टूबर से मार्च के बीच मौसम काफी सुहावना रहता है। अक्टूबर में राजगीर में महोत्सव भी होता है, राजगीर महोत्सव, इसका भी हिस्सा आप बन सकते हैं। और अगर आप अभी जाएं तो जो मलमास मेला है, आप इस आयोजन को भी देख सकते हैं। तो भाई अपने आप में बहुत ही खास है ये जगह। 3 धर्मों का संगम है राजगीर, हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों के लिए पवित्र स्थान है ये। इन धर्मों से जुड़े लोग तो यहाँ जाते ही हैं, लेकिन वैसे भी देश विदेश से सैलानी यहाँ पहुँचते हैं, इस जगह की खूबसूरती को देखते हैं, निहारते हैं। और यहाँ पर बहुत कुछ है देखने को, पर वक्त अब मेरे पास बहुत कम है, तो जल्दी से एक और गीत आप तक पहुँचाती हूँ और इस गीत के बाद आगे क्या है ज़रूर बताऊँगी।

0: तो भाई अब वक्त हो चुका है 11:59:17 यानी ये वक्त है मेरे जाने का, आपसे विदा लेने का, लेकिन इस वादे का भी कि अगली बार फिर किसी रोज किसी और सफर में होगी आपसे मुलाकात, और तब तक के लिए आपकी दोस्त आरजे रेखा क्रिस्टल वॉइस लेती है आपसे विदा। और आप अपना ऐसे ही ख्याल रखिए, गर्मी का मौसम है, पानी पिए बिना घर से बाहर मत निकलिए, खुद को कवर करके निकलिए। बस हम तो आपकी मंगल कामना करते हैं, और आज मंगलवार के दिन आपसे मुलाकात हो गई, अब कोशिश रहेगी अपने शुक्रवार को फिर से मिलने की। तो मैं चलती हूँ, खुश रहिए, खुशहाल रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, बाय बाय।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आदिवासी छात्रवृत्ति प्राप्त करने वालों से बात की। इस अवसर पर राष्ट्रपति उपस्थित लोगों को संबोधित कर रही हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: मैं हमेशा कहती हूँ, हम जिस स्तर से यहाँ तक पहुंचे हैं उसको भूलना नहीं चाहिए। बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े पोस्ट में हम रहे हैं, अपना अतीत को तो याद करते हैं, खुद के जैसा दूसरे इस चीज को ना झेले, इसके लिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए।

0: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। केंद्र सरकार ने कल उच्च न्यायालय के 4 मुख्य न्यायाधीशों और वरिष्ठ अधिवक्ता मोहना को सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत करने की मंजूरी दी थी। सोशल मीडिया पोस्ट में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने घोषणा की कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इनको न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशातिले से भेंट की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अवसरों पर चर्चा की। डॉ जयशंकर ने आपसी साझेदारी को मजबूत करने के लिए श्री माशातिले की सराहना की। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि भारत और दक्षिण अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करना चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमरीका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वासन दिया है कि भारत के खिलाफ म्यांमा की जमीन का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। दोनों नेताओं के बीच कल नई दिल्ली में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत का समर्थन दोहराया। प्रधानमंत्री ने म्यांमा से पूर्वोत्तर में संचालित आतंकी गुटों का भी मुद्दा उठाया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि म्यांमा के राष्ट्रपति ने भरोसा दिलाया कि भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ म्यांमा की धरती का इस्तेमाल नहीं होगा।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
0: गृह मंत्रालय ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिया है। इसमें आव्रजन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण और समय सीमा से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस संशोधन के अंतर्गत भारत आने के बाद 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी पंजीकरण कराया जा सकता है। इससे पहले 180 दिन की अवधि समाप्त होने के 14 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। CBSE ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। छात्रों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका ₹100 और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न ₹25 का भुगतान करना होगा। मौसम विभाग ने आज भीतरी कर्नाटक, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिक्काल में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। President Draupadi Murmu is addressing the tribal beneficiaries of the Ministry of Tribal Affairs flagship scholarship schemes at Rashtrapati Bhavan. We now go over live to the President's address.
3: कुछ ना करें क्या, कैसे करें, कैसे आगे जाएं? लेकिन ऐसी परिस्थितियों में आपको नैतिकता के साथ ही नहीं, नैतिकता को कभी भूलना नहीं है और आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। जनजातीय समाज के हमारे पूर्वजों ने अपनी संस्कृति और अस्मिता की रक्षा के लिए अनेक संघर्ष किए हैं और बलिदान भी दिए हैं, जैसे कि बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा तो केवल ना है, लेकिन ऐसे बहुत सारे बिरसा मुंडा देश के लिए, मिट्टी के लिए, लेकिन उनका इतिहास में नाम नहीं है।

घर आंगन के शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट सिमरन कौर। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आप हमें सुन रहे हैं एफएम गोल्ड की 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और इंद्रप्रस्थ के चैनल 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज पर। और दोस्तों, आपसे मिलने का मन तो हर बार करता है और लेकिन कभी कभी मिलने का मौका मिलता है तो बहुत खुशी होती है, क्योंकि हमारा रिश्ता और आपका रिश्ता बहुत पुराना है और यूं ही ये रिश्ता चलता रहे हम यही कामना करते हैं। प्रकृति हमें सिखाती है दोस्तों कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। अगर सुबह के बाद रात आती है तो रात के बाद फिर से नया सवेरा आता है। इसीलिए वक्त चाहे कैसा भी हो, जैसा भी हो, हर हाल में मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

0: और अब बात करते हैं दोस्तों आकाशवाणी की 90 सालों की शुरुआत की, जिसमें डिजिटल सैटेलाइट युग की शुरुआत हुई। 27 फरवरी 2002 को आकाशवाणी ने अपनी पहली डायरेक्ट टू होम डिजिटल सैटेलाइट सेवा शुरू करके एक नई तकनीकी क्रांति का आगाज किया। इस सेवा के माध्यम से श्रोताओं को एनालॉग के बजाय सीधे सैटेलाइट के उच्च गुणवत्ता की स्पष्ट ध्वनि के कार्यक्रम मिलने लगे और इस डिजिटल सेवा में समाचार, मनोरंजन और लोकप्रिय एफएम चैनलों के कार्यक्रमों का एक बेहतरीन मिश्रण प्रस्तुत किया गया। इस पहल से आकाशवाणी की पहुंच भारतीय उपमहाद्वीप से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया तक फैल गई, जिससे दूर दराज के क्षेत्रों में भी स्पष्ट प्रसारण पहुंचना आसान हो गया। तकनीक के इस नए प्रयोग ने रेडियो को डिजिटल युग की ओर अग्रसर किया और आकाशवाणी को एक आधुनिक और वैश्विक मंच पर स्थापित किया। और इसके अलावा ये ऐतिहासिक सफर देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में एक विशेष क्षण को दर्शाता है, जब एक ऐसी आवाज का जन्म हुआ जो पीढ़ियों तक गूंजती रहेगी। आकाशवाणी एक ऐसा केंद्र बन गया जहां आवाजों को पंख मिले और इतिहास को एक माइक मिला। इन शांत दीवारों को ऐसी गूंज निकली जिसमें एक राष्ट्र ऐसे राष्ट्र को आकार दिया, तब से लेकर अब तक भावपूर्ण और अविस्मरणीय बना हुआ है। तो ये रही आकाशवाणी की बात। अब हम सुनवाते हैं आपको इसी से संबंधित एक खास कार्यक्रम। आकाशवाणी के 90 वर्ष पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज की पत्रकारिता विभाग की प्रोफेसर डॉक्टर शशि रानी से विशेष बातचीत, और बात कर रही है रश्मि कुकरेती। तो आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।
1: नमस्कार, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का चैनल एफएम गोल्ड, एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप ये कार्यक्रम सुन पा रहे हैं। और दोस्तों, ये कार्यक्रम है घर आंगन। आप जैसा कि जानते ही हैं कि आकाशवाणी केवल प्रसारण सेवा ही नहीं, बल्कि हमारे देश की चेतना का वो अदृश्य तंत्र है जिसने मिट्टी से उठती आवाजों को, सीमाओं पर तैनात सन्नाटों को और घरों में भीतर धड़कते छोटे छोटे सपनों को एक तरंग में बांध दिया है।

0: और आकाशवाणी के जो 90 साल है ना, उसके इतिहास में तो महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही ही है। ये जो भूमिका है वो केवल भागीदारी तक सीमित नहीं है, बल्कि एक सशक्त उपस्थिति के रूप में सामने आई है। और इसी श्रृंखला में इसी का एक उदाहरण है जो आज हमारे मेहमान हैं, जो स्टूडियो में मौजूद हैं, आप हैं डॉक्टर शशि रानी। डॉक्टर शशि रानी दिल्ली विश्वविद्यालय के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज में प्रवक्ता के रूप में काम कर रही हैं। आप प्रोफेसर के रूप में मीडिया पढ़ाती हैं छात्र छात्राओं को, तो बहुत स्वागत कर रहे हैं उनका एफएम गोल्ड के स्टूडियो में। नमस्कार।
1: नमस्कार
0: डॉक्टर शशि जी, आप तो मीडिया पढ़ाती हैं और मीडिया में एक बहुत सशक्त उपस्थिति है हमारे एफएम चैनल्स की, हमारे मीडियम वेव चैनल्स की और अन्य जो हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी, तो उनके बारे में भी बहुत सारी बातें करेंगे और आपके जो रेडियो का रुझान है उसके बारे में भी बातें करेंगे। तो आप ये बताएं कि रेडियो से कैसे जुड़ी हैं आप?
1: रेडियो से तो मैं बचपन से ही जुड़ी हूँ। जब कभी मैं 10वीं 12वीं क्लास में थी तो मैथ्स के सवाल करते हुए भी रेडियो मेरा चलता ही रहता था, या कहीं एक कमरे से दूसरे कमरे में सफाई के लिए जाना है तो वहाँ पे भी रेडियो सेट लेके ही जाना था। रात को हवा महल देखना, गाने सुनना, तो ये तो पुराना ही रहा है। रेडियो सुनना तो मेरी हॉबी रहा है बचपन से।
0: जी क्या बात है। देखिए, एक मीडिया पढ़ाना और रेडियो से प्रेम, ये तो जिसे कहते हैं ना सोने में सुहागा जैसी बात हो गई। और इसके अलावा अपने बारे में कुछ बताएं।
1: मैं पिछले 28 वर्षों से अम्बेडकर कॉलेज में पढ़ा रही हूँ और मेरा जो काम है, जो मेरा रिसर्च वर्क था, वो कुकुरमुत्ता पर मैंने एमफिल किया था और हिंदी की प्रगतिशील कविता में लोक तत्व पर मेरा पीएचडी है, जो कि डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी के साथ निर्देशन में करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए, क्योंकि हिंदी पत्रकारिता और जनसंचार का जो पाठ्यक्रम है, तो दिल्ली विश्वविद्यालय का पहला कॉलेज है जहाँ पर ये शुरू हुआ। और अगर मैं ये कहूँ कि ऑनर्स के स्तर पर ये पूरे भारत का पहला अगर कॉलेज है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि वहीं से शुरू हुआ, डायरेक्ट यूजीसी से ही ये कार्यक्रम जो आया था। अब तक अंग्रेजी वगैरह में थे लेकिन हिंदी में नहीं था, तो हिंदी माध्यम से पत्रकारिता में आगे बढ़ना, जबकि सोचा जाता है कि अंग्रेजी के बिना इसमें कोई भविष्य नहीं है, तो उस भविष्य को तलाशने की और एक ही कोशिश थी, अच्छा प्रयास था।
0: एक महिला प्रोफेसर के रूप में क्या लगता है कि कहाँ तक रेडियो वो भूमिका निभा पाया है?
1: मुझे लगता है कि यदि मैं ये कहूँ कि रेडियो हमारी जो भारतीय जीवन धारा है उसकी प्राण रेखा है, जीवन रेखा है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।
0: क्या बात,
1: क्योंकि अन्य जो माध्यम है वहां तक जो हमारा हाशिए का समाज है उनकी बात नहीं की जाती है,
0: बिल्कुल,
1: लेकिन जो हमारा रेडियो है वो हाशिए के समाज की बात करता है, उन लोगों की बात करता है जहां तक और लोग नहीं जाते हैं।
0: आकाशवाणी,
1: तो इस रूप में जो आकाशवाणी है उसकी जो भूमिका है उस तक कोई जा ही नहीं सकता,
0: क्योंकि जब हम बात करते हैं हाशिए के समाज की, तो वाकई आकाशवाणी की जो सोच है, उसकी जो कार्यक्रमों की जो विचारधारा है, उसका पहला जो मंत्र है वो यही है कि ऐसे लोगों के लिए काम करें जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है वो आवाज वहां तक पहुंच पाए, कोने कोने तक पहुंच पाए। और यही कारण है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जब उन्होंने अपनी बात को पहुंचाना चाहा तो उन्होंने आकाशवाणी को चुना ताकि कश्मीर से कन्याकुमारी तक उनकी बात पहुंच पाए।
1: हाँ, क्योंकि एक रेडियो एक सेतु का काम कर रहा है, चाहे वो प्रधानमंत्री के मन की बात हो या जनता के मन की बात हो, तो एक दूसरे तक जब तक नहीं पहुंचेगी तब तक समस्याओं के समाधान नहीं निकलेंगे।
0: जी बिल्कुल, इसके कार्यक्रम समर्पित रहे हैं युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, और कदम से कदम मिलाकर चलता रहा है। अब आपसे जानना चाहूंगी कि आप जब अपने छात्र छात्राओं को पढ़ाती हैं उनका आकाशवाणी के प्रति कैसा रुझान है?
1: आजकल के जो बच्चे हैं वो आकाशवाणी की तरफ उनका रुझान, जैसे समाचार के प्रोग्राम हो गए, उनकी तरफ थोड़ा कम है। उनके जो एफएम के जो अन्य चैनल है उनकी तरफ जो रुझान है उनका ज्यादा है। लेकिन जैसे अगर मीडिया के स्टूडेंट्स होने के नाते अगर वो उनसे जुड़े हैं तो बहुत कुछ मिलेगा उन्हें सीखने के लिए, जैसे बच्चों के लिए है, महिलाओं के लिए है, किसानों के लिए है, एंटरप्रेन्योर्स के लिए, तरह तरह के जो प्रोग्राम है इसमें होते हैं और उनसे कुछ एक सीख मिलती है।
0: बहुत सही बात आपने कही, क्योंकि जब नए गानों की सुनने की बात आती है तो जो नए बच्चे हैं वो एफएम रेनबो से जुड़ते हैं।
1: हाँ,
0: और उसके बाद जब उनको समाचार सुनने होते हैं, क्योंकि भाई करियर भी तो बनाना
1: हाँ,
0: है,
1: बिल्कुल,
0: तो उनको जब समाचारों को बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि एक फुल अप टू डेट रहना होता है, तो वो एफएम गोल्ड से जुड़ते हैं क्योंकि वहां समाचार भी है और गीत संगीत भी है।

0: तो कहीं ना कहीं वो ये रेडियो से कनेक्ट बन ही जाता है।
1: बिल्कुल,
0: ज्यादातर आप आकाशवाणी कब सुनते हैं?
1: ज्यादातर मैं आकाशवाणी जैसे या तो ड्राइव कर रही हूँ तब सुनती हूँ,
0: जी,
1: या फिर रात को जैसे कुछ काम करना है तो उस दौरान मैं आकाशवाणी
0: यानी
1: सुनती
0: कि
1: हूँ।
0: आपकी जो दिनचर्या है उसमें से आप समय निकाल ही
1: हाँ, सुबह
0: लेती हैं।
1: जाते हुए भी सुना जाता है, दोपहर को आते हुए भी सुना जाता है, या शाम को कभी जा रहे हो तब भी सुना जाता है,
0: जी,
1: तो आकाशवाणी तो सुना ही जाता है।
0: तो यानी कि आप जुड़ी हुई हैं। कौन कौन से कार्यक्रम सबसे अच्छे लगते हैं?
1: जैसे कई बार दोपहर को जाती हूँ तो सखी सहेली आ रहा होता है।
0: जी।

0: को कभी जा रहे हो तब भी सुना जाता है
1: जी,
0: तो आकाशवाणी तो सुना ही जाता है।
1: तो यानी कि आप जुड़ी हुई हैं। कौन कौन से कार्यक्रम सबसे अच्छे लगते हैं?
0: जैसे कई बार दोपहर को जाती हूँ तो सखी सहेली आ रहा होता है,
1: जी
0: शाम को जाती हूँ तो सैनिक भाइयों के लिए प्रोग्राम आता है, मार्केट मंत्र आ रहा होता है,
1: FM गोल्ड पर आता है
0: जी, तो ये प्रोग्राम मैं सुनती हूँ।
1: तो देखिए हमारे साथ यहाँ शशि रानी जी मौजूद हैं और हमारी एक प्रबुद्ध श्रोता हैं, एक समर्पित श्रोता हैं, मीडिया पढ़ाती हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें चल रही हैं आकाशवाणी के बारे में। मीडिया पर एक प्रश्न आपसे ले लेते हैं, क्या करियर देख पाती हैं छात्र छात्राओं के लिए?
0: करियर की अगर हम देखें तो बात करते हैं कि जैसे AI आ गया है तो उसकी वजह से जो मीडिया के जो छात्र हैं उनके लिए संभावनाएं कम हो गई हैं, लेकिन मैं उसको दूसरी तरीके से देखती हूँ। मुझे लगता है कि जो AI है वो एक यंत्र है, तो लेकिन जो मनुष्य की जो चेतना है, मनुष्य का जो स्पंदन है, उसकी जो संवेदना है, उसका वो पर्याय नहीं हो सकता। तो उसके लिए तो एक मनुष्य की एक संवेदना की एक चेतन व्यक्ति की ही जरूरत पड़ेगी। तो उससे मुझे लगता है कि घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि उसको साधन बनाए, साध्य ना बनाए।
1: जी बिल्कुल, क्योंकि जब कंप्यूटर्स के आने की बात हुई थी
0: जी,
1: तो भी ये एक डर जनमानस में हुआ था कि अगर कंप्यूटर्स आ जाएंगे तो लोगों की नौकरियां कम हो जाएंगी, जबकि हमने देखा जैसे जैसे समय बीता कि कंप्यूटर्स के जरिए कितने लोगों को रोजगार मिले। तो मुझे लगता है शायद AI में भी कुछ ऐसा ही होने वाला
0: है। बिल्कुल,
1: बेहतरी की ओर जाएंगे, मुझे लगता है और जॉब्स क्रिएट होंगे और लेकिन अलग अलग तरह के
0: अलग अलग
1: हैं, हमें अपने आप को दोबारा रचने की जरूरत है।
0: बिल्कुल।
1: तो महिलाओं की क्या भूमिका देख रही है मीडिया में, कितना मुश्किल होने वाला है कितना आसान होने वाला है?
0: जहां तक महिलाओं की बात है तो कोई भी जो समाज है अगर जब तक वो महिलाओं को साथ नहीं लेके चलेगा तब तक वो आगे बढ़ ही नहीं सकता।
1: जी,
0: वो एक गाड़ी के दो पहिए की तरह है, तो जब महिलाएं साथ होगी तभी समाज होगा। मुझे लगता है कि महिलाओं के आने से जो एक परिवेश है वो एक समरसता का परिवेश बनता है, और वो हमारे आसपास घरों में जितना ज्यादा बढ़ेगा, घरों में हो या कार्यक्षेत्र में हो या समाज में हो, जितना हम उनके लिए संवेदनशील रहेंगे उतना ही जो समाज है जवाबदेह भी होगा और उनकी जो जिम्मेदारी है उसके प्रति वो महसूस भी करेंगे। तो महिलाएं तो साथ साथ चलनी ही चाहिए, क्योंकि जो क्रिएटिविटी जो रचनात्मकता उनके अंदर है उसका जो अभाव है वो नहीं रहेगा फिर।
1: बहुत सुंदर। डिजिटल मीडिया का क्या भविष्य देख पा रही हैं और जो छात्र छात्राएं करके निकलते हैं मीडिया की डिग्री लेकर निकलते हैं वो किस प्रकार से उसके साथ समन्वय बिठा पाते हैं?
0: जैसे इसके साथ साथ पढ़ने के साथ साथ वो इंटर्नशिप के लिए जाते हैं, तो जैसे मान लीजिए उनका अखबार में रुझान है तो वहां पर उनका जो स्क्रिप्टिंग है, जो लेखन का स्तर है, जब वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है तो फिर वो कोई भी जो क्षेत्र हो तो उसके लिए मुश्किल नहीं रहता, चाहे वो डिजिटल हो चाहे वो रेडियो, क्योंकि लेखन से ही हर काम जो है वो शुरू होता है। अगर आपका लेखन अच्छा है तो आप मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म हो आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। हमारे जो छात्र छात्राएं हैं वो दूरदर्शन, आकाशवाणी, इसके अलावा जितने भी प्राइवेट चैनल्स हैं उन सभी में कार्यरत हैं।
1: और चलते चलते क्या संदेश देना चाहेंगी हमारे सुनने वालों को?
0: चलते चलते मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि आप FM से, आकाशवाणी से जरूर जुड़े। जो भाषा FM के पास है, आकाशवाणी के पास है, वो आपको दूसरे चैनल पर नहीं मिलेगी। भाषा के साथ खिलवाड़ की जो गुंजाइश है वो यहाँ पर नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि भाषा ही हमारा जो है माध्यम है और हमारी पहचान है। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं है कवशूल। तो अपनी भाषा जो है वो हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति है, तो उससे जुड़ना अपनी पहचान से जुड़ना है और इसी को लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए।
1: जी बिल्कुल सही कहा शशि जी ने। और आकाशवाणी भाषा का तो संसार है ही, बल्कि यहाँ स्मृतियाँ, संवेदनाएं और सामूहिक चेतना का भी ये एक संसार रचता है। और हम ये भी कहेंगे कि महिलाओं ने इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई है और इसकी आत्मा के समान रही हैं। तो नारी प्रतिभा, संवेदनशीलता और समर्पण ने आकाशवाणी को वो आत्मीयता दी है श्रोताओं, जिससे कि ये आपके जीवन का एक हिस्सा बन गया है, जैसे कि ये कार्यक्रम है जिसका नाम है घर आंगन। और दोस्तों आज इस घर आंगन में हमारे साथ हैं शशि रानी जी, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कॉलेज में मीडिया पढ़ाती हैं, प्रोफेसर हैं। आज हमने उनसे ढेर सारी बातें की, तो हम उनकी पसंद का गीत सुनेंगे और फिर लेंगे विदा। इस मौके पर कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
0: हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे।
1: वाह क्या बात है। तो आइए सुनते हैं दिल एक मंदिर फिल्म का ये गीत।

0: इतना सुरीला ये गीत था। इस गीत के साथ ही समेटते हैं ये मुलाकात, फिर मिलेंगे, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 वर्ष पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज की पत्रकारिता विभाग की प्रोफेसर डॉक्टर शशि रानी से विशेष बातचीत। बात करी थी रश्मि कुकरेति।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे

0: हाल से लेकर
1: चलते हुए फील्डर से नहीं रुकी गेंद सीमा रेखा के बाहर
0: चौका, मन की बात के संवाद तक
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: जी हाँ, आकाशवाणी के 90 वर्षों की शुरुआत कितनी खुशी की बात है ना। और सच में जब हम खुशी की बात करते हैं तो खुश रहना सेहत और रिश्तों के लिए फायदेमंद साबित होता है। जैसा आप जानते हैं, हंसी की ठहाके, मुस्कान, खुशियां आपके दिन भर की थकान दूर कर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी इसका कारण जाना है? दरअसल गप्पे मारना समय की बर्बादी नहीं बल्कि सेहत का राज है। अपने साथी और दोस्तों के साथ गप्पे मारना आखिर किसे पसंद नहीं होता। अब साइंस भी इस बात को मानती है कि गपशप करने से आप स्वस्थ रह सकते हैं और इससे रिश्ते भी मजबूत होते हैं। तो एक रिसर्च में पाया गया है कि जो साथी गपशप करते हैं वो काफ़ी खुश रहते हैं और ये गपशप आमतौर पर मज़ेदार और हल्की फुल्की होती है, तो इनसे रिश्तों में भी ताजगी बनी रहती है। ये बातें आपके अनुभव, मजाक या कॉमन आदतों से संबंधित हो सकती हैं। इससे एक दूसरे पर भरोसा और साझा यानी कि समझ पड़ती है और बातें करने से दो लोगों के बीच की दूरियां कम होती हैं। जब दो लोग बातें साझा करते हैं तो अक्सर एक दूसरे की भावनाओं से जुड़ी होती हैं। जब आप किसी के साथ दिल की बातें करते हैं तो मन को राहत मिलती है और मूड भी अच्छा हो जाता है। और ख़ास तौर पर महिलाओं पर तो गपशप से पॉजिटिव असर भी देखने को मिला है और वे खुद को ज़्यादा खुश, संतुष्ट और इमोशनली सिक्योर महसूस करती हैं। तो है ना कितना आसान सा उपाय, गपशप करिए, खुश हो जाइए और अपने और रिश्ते को यानी कि सेहत को भी साथ साथ में मजबूत बनाइए।

आधा आधा बांट लीजिए, लेकिन उससे पहले कुछ काम भी कर लीजिए, अपने आप को स्वस्थ रख लीजिए। यानी कि सुबह की पहली किरण के साथ एक गहरी सांस लीजिए, छोड़िए और महसूस कीजिए कि ये है योग। पर सिर्फ योग सिर्फ एक दिन का नहीं, रोज जीवन जीने का तरीका है, यही है योग की शुरुआत। हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव, थकान, कमर दर्द, बीपी, शुगर, ये सब आम हो गया है। गोलियां खाते हैं, पर हल कहाँ है? हल है आपके अंदर। योग करें, स्वस्थ रहें। योग मतलब सिर्फ आसन नहीं, योग है शरीर, मन और सांस को जोड़ना। रोज 30 मिनट काफी है। शुरुआत कीजिए अनुलोम विलोम से, सांसों को साथ लिया तो मन शांत, और फिर कीजिए ताड़ासन, रीढ़ सीधी, कद लंबा, आत्मविश्वास ऊंचा। बुजुर्गों के लिए सुखासन, ऑफिस वालों के लिए कुर्सी पर बैठे बैठे गर्दन के व्यायाम, योग सबके लिए सब जगह है। योग शरीर को लचीला बनाता है, पर असली कमाल मन पर करता है। यानी गुस्सा कम, नींद बेहतर, इम्यूनिटी मजबूत। जीवन में हमें सिखाया कि दवा के साथ दुआ और प्राणायाम भी जरूरी है। ना मैट चाहिए ना पैसा, बस एक संकल्प कि मैं रोज योग करूंगी, अपने जीवन को बेहतर बनाऊंगी। क्योंकि जब आप बदलेंगे तभी देश बदलेगा। तो उठिए, सांस लीजिए और बोलिए अपने साथ, योग करें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें।

और अब बात करते हैं कुछ घूमने और घुमाने की। जी हाँ, यात्रा करना जीवन से तनाव को कम करना है, यानी यात्रा करना जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि ये व्यस्त दिनचर्या से बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका है। कई लोग यानी कुछ लोग नई जगह खोज करने और लोगों से बातचीत करने, अलग अलग संस्कृति, संगीत, त्यौहार और दुनिया के लोगों से जीवन जीने के तरीकों के बारे में जानने के लिए यात्रा करते हैं, जबकि कुछ लोग शांति, खुशी और आत्मप्रेम पाने के लिए यात्रा करते हैं। हमारा दैनिक जीवन तनावपूर्ण स्थितियों से भरा हुआ है, ऐसे में अपने दिमाग को शांत करने और तनाव मुक्त करने का एक आदर्श तरीका है यात्रा। मानसिक स्वास्थ्य के लिए यात्रा बेहद जरूरी है, यानी यात्रा करने से ऐसे कौशल विकसित होते हैं जिनके बारे में आपको पता ही नहीं था। यात्रा करने से आपको नई भाषा, संस्कृति सीखने

को भी मिलती है, यानी यात्रा आपको अच्छी कहानियां भी देते हैं और इससे सार्थक रिश्ते भी बनते हैं। और सबसे जरूरी बात, यात्रा करने से आपको अपने घर की याद बहुत ज्यादा आती है और अपने घर से ज्यादा लगाव हो जाता है। तो यात्रा कीजिए और अपने तनाव को टाटा बाय बाय कीजिए।

अब हम यही कहना चाहते हैं कि हमें यूं ही सुनते रहिए घर आंगन के इस शो में, और इसी वादे के साथ कि आपसे होगी अगली मुलाकात। तब तक के लिए आप रहें खुश, स्वस्थ और मस्त। तो दीजिए इजाजत सिमरन कौर को, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है। ये लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। आज नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सही विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें।
1: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशातिले से भेंट की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अवसरों पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने आपसी साझेदारी को मजबूत

0: करने के लिए श्री माशातिले की सराहना की। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि भारत और दक्षिण अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करना चाहिए। भारत ने इबोला वायरस से निपटने के लिए अफ्रीका को चिकित्सा सहायता की 43 टन की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस खेप में निदान, निगरानी उपकरण और दवाएं शामिल हैं। श्री जयशंकर ने कहा कि इससे अफ्रीकी संघ के सदस्य देशों को इबोला वायरस से निपटने में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है। मंत्रालय ने सलाह दी है कि ऐसे व्यक्ति जो पिछले 21 दिन में इबोला प्रभावित देश से यात्रा करके आए हैं, उन्हें बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, दस्त या बिना किसी स्पष्ट कारण के रक्तस्राव जैसे लक्षण दिखाई दें तो वे स्वयं को लोगों से अलग कर लें। मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे व्यक्ति स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों को तुरंत सूचित करें। नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। गृह मंत्रालय ने आवर्जन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिया है। इसमें आवर्जन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण और समय सीमा से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस संशोधन के अंतर्गत भारत आने के बाद 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी पंजीकरण कराया जा सकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। रिलायंस कम्युनिकेशंस ग्रुप के पूर्व प्रबंध निदेशक अमिताभ झुंझुनवाला को सीबीआई ने करोड़ों रुपए के बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार कर लिया है। ये मामला भारतीय स्टेट बैंक से लिए गए 1200 करोड़ रुपए के सावधि ऋण, बैंक ऑफ महाराष्ट्र से लिए गए 500 करोड़ रुपए के लेटर ऑफ क्रेडिट और सिंडिकेट बैंक से लिए गए 350 करोड़ रुपए की क्रेडिट सुविधा के कथित दुरुपयोग से संबंधित है। एजेंसी ने पहले ही 16 व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक वर्ष में प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद में 53 गर्भवती महिलाओं की कथित मृत्यु के संबंध में राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। एक मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए आयोग ने इस मामले में 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये 6 जून तक खुला रहेगा। सीबीएसई ने कहा है कि यह सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। छात्रों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रुपये और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 25 रुपये का भुगतान करना होगा। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 81 अंक गिरकर 74,186 पर, जबकि निफ्टी 44 अंक लुढ़ककर 23,338 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। President Draupadi Murmu has said that education is a powerful means of empowerment as it enables individuals to become self-reliant, aware and capable. Addressing the tribal beneficiaries of scholarship scheme in New Delhi today, the President said true development can only be achieved when all sections of society progress socially, economically and educationally. She highlighted that the government scholarship schemes have transformed the lives of tribals by enabling access to higher education and new opportunities.
2: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
1: The Ministry of Home Affairs has notified the Immigration and Foreigners Amendment Rules 2026, introducing key changes to registration timelines and the appeals mechanism.

नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हो चुका है दोपहर के 1:11 और 5 सेकेंड्स। मैं आपका रेडियो हमसफर राम प्रकाश स्वागत करता हूं आप सभी का कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल में। आज के कलाकार बेमिसाल कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे बड़े शोमैन कहे जाने वाले मशहूर अभिनेता

माता और निर्देशक राज कपूर साहब के बारे में। जी हाँ, वही राज कपूर जिनकी लोकप्रियता यूएसएसआर यानी सोवियत संघ और मिडिल ईस्ट में हर शहर की कहानी बन चुकी थी। राज कपूर साहब ने अपनी फिल्मों में जिस तरह से प्रेम कहानियों का फिल्मांकन किया, उसका अनुसरण भारतीय सिनेमा में आज भी किया जाता है।

राज कपूर का जन्म 14 दिसंबर 1924 को अविभाजित भारत के पेशावर शहर में हुआ था। उनके पिता एक मशहूर अभिनेता थे जिनका नाम पृथ्वीराज कपूर था। सन 1935 में मात्र 11 वर्ष की उम्र में राज कपूर ने फिल्म इंकलाब में अभिनय किया था। उसके बाद वो मशहूर निर्देशक केदार शर्मा के साथ काम करते हुए फिल्म निर्माण की कला और अभिनय की बारीकियां सीखने लगे। केदार शर्मा ने राज कपूर के भीतर के अभिनय की क्षमता और लगन को पहचानते हुए सन 1947 में अपनी फिल्म नील कमल में उन्हें अहम किरदार यानी नायक की भूमिका दे दी। उनकी इस फिल्म सफर की शुरुआत एक मशहूर अभिनेत्री मधुबाला के साथ हुई।

जी हाँ, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल सुन रहे हैं आप अपने दोस्त राम प्रकाश वर्मा के साथ। दोस्तों, आज के कलाकार बेमिसाल कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं मशहूर निर्माता, निर्देशक और अभिनेता राज कपूर साहब के बारे में।

राज कपूर साहब ने सन 1948 में आर के प्रोडक्शन हाउस की शुरुआत की और सन 1948 में ही आर के फिल्म्स के बैनर तले बनी फिल्म आग वो पहली फिल्म थी जिसमें राज कपूर साहब ने बतौर अभिनेता, निर्माता और निर्देशक के रूप में काम किया था। उसके बाद उन्होंने सन 1949 में अपनी दूसरी फिल्म बरसात बनाई। बरसात वो फिल्म थी जिसने राज कपूर को एक नई पहचान दिलाई और सफलता का एक नया

रामानंद सागर और अभिनेत्री निम्मी। कहा यह भी जाता है कि मशहूर गायिका लता मंगेशकर को भी सही मायने में पहचान बरसात फिल्म के गानों से ही मिली थी।

1951 में राज कपूर द्वारा बनी फिल्म आवारा हिंदी सिनेमा के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुई। इसने राज कपूर को नायक के रूप में नई और अलग पहचान दिलाई और आवारा फिल्म ने ही फिल्मों को सामाजिक यथार्थ के धरातल पर लाकर खड़ा कर दिया। आवारा फिल्म के बारे में उस समय के एक मशहूर पत्रकार कहते हैं कि चीन, पूर्व सोवियत संघ और मिश्र जैसे देशों में राज कपूर हमेशा के लिए भारत का प्रतीक बने रहेंगे। उस समय के चीन के सबसे बड़े नेता ने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि आवारा उनकी सर्वाधिक पसंदीदा फिल्म है। शायद यही कारण है कि आज भी पेचिंग और मॉस्को की सड़कों पर घूमते टहलते हुए आवारा हूं गीत सुनाई पड़ने लगता है और ये राज कपूर की लोकप्रियता का सबसे बड़ा उदाहरण है।

दोस्तों बात करें राज कपूर साहब की कुछ चर्चित फिल्मों की, तो फिल्म श्री 420, चोरी चोरी, जागते रहो, जिस देश में गंगा बहती है, परवरिश, फिर सुबह होगी, अनाड़ी, बॉबी, सत्यम शिवम सुंदरम, प्रेम रोग और राम तेरी गंगा मैली आदि फिल्में वो फिल्में हैं जो दर्शकों के बीच आज भी काफी पसंद की जाती हैं। सन 1970 में बनी फिल्म जिस मेरा नाम जोकर राज कपूर के जीवन की सबसे महत्वाकांक्षी फिल्म थी। ये फिल्म उस समय की कुछ खास सफल नहीं रही, परंतु बाद में इस फिल्म ने सफलता के नए आयाम हासिल किए और इसीलिए इस फिल्म को कालजयी फिल्म भी कहा जाता है।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: जी हाँ, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल सुन रहे हैं आप अपने दोस्त राम प्रकाश वर्मा के साथ। बात करें राज कपूर साहब की उपलब्धियों की तो सन 1971 में उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया और सन 1987 में हिंदी सिनेमा के सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें कई बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए फिल्म फेयर पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।

दोस्तों, राज कपूर साहब अभिनेता, निर्माता और निर्देशक होने के साथ साथ संगीत की भी बहुत अच्छी समझ रखा करते थे। इस महान कलाकार ने सन 1988 में 2 जून यानी आज के ही दिन इस दुनिया को अलविदा कह दिया। भारतीय सिनेमा में राज कपूर साहब के योगदान को हम कभी नहीं भुला सकते और उनकी अदाकारी, उनके द्वारा दिया गया सिनेमा और सिनेमा को योगदान हम हमेशा याद करते रहेंगे।

दोस्तों, इसी गीत के साथ कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल यहीं पर संपन्न होता है। अपने दोस्त राम प्रकाश वर्मा को अनुमति दीजिए। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: वंदे मातरम।
1: वंदे मातरम सुजलां सुफलां मलयज शीतलां।

میرم دروما دلش آبینی سو هستینی سو مدورم هاشینی.

यानी 1521 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। आज सन 2026 जून महीने की दूसरी तारीख व दिन है मंगलवार। अब से लेकर रात 9:16 तक हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए ड्यूटी पर उपस्थित रहेंगे कार्यक्रम निष्पादक श्री तंजिम दर्जे, मनपा उद्घोषक श्री थुतन टशी, तकनीकी अभियंता श्री तानिंग तको, ट्रांसमीटर में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री अंटू कुमार दास और शिखा डिका और स्टूडियो में उपस्थित अन्य सहकर्मियों के साथ मैं हूं आज की हिंदी उद्घोषिका टाशी छुटन। आप सभी श्रोताओं का हमारे आज के प्रसारण में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है।

ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। आपसे थोड़ी देर में यानी दोपहर 2 बजे आप सुन सकेंगे अंग्रेजी में समाचार और 2:15 पर हिंदी में समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: The visit seeks to initiate party-to-party engagement between RSP and BJP and provide an opportunity for exchange of views on organizational practices, democratic processes, and people-centric political outreach. The India Meteorological Department, IMD, has issued an orange alert for thunder squall conditions over Rajasthan, Gujarat, West Madhya Pradesh, Odisha and coastal Andhra Pradesh during the day. While heavy rainfall will occur over interior Karnataka, Kerala, Mahe, Lakshadweep, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till tomorrow. Thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds are likely over Haryana, Chandigarh, Delhi, Chhattisgarh, Jharkhand, Gujarat, Goa, Maharashtra, Andhra Pradesh, Telangana and West Uttar Pradesh for the next 2 to 3 days. Hot and humid weather conditions will prevail over entire northeast, including coastal Andhra Pradesh, Odisha and sub-Himalayan West Bengal today. On to sports and women's cricket, the third and final T20 international of the series between India and England will be played at Taunton in England tonight. The match will begin at 11 p.m. IST. The series is level with India winning the first match in Chelmsford by 38 runs and England levelling the series with a 26-run victory in Bristol. In hockey, India registered a commanding 4-1 victory over Korea in their third Pool A match of the Men's Under-18 Asia Cup in Kakamigahara, Japan. Captain Ketan Kushwaha scored in the third and the 36th minute. Varinder Singh and Shah Rukh Ali scored the other two goals. Korea's lone goal came through Captain Yoon Jae-hyuk. And now before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu addresses tribal beneficiaries of scholarship schemes at Rashtrapati Bhavan, emphasizes social, economic and educational progress of all sections of society for true development. Government notifies Immigration and Foreigners Amendment Rules 2026 with key changes in registration timelines and the appeals mechanism. Chief Justice of India, Justice Surya Kant, administers oath of office to 5 new judges of Supreme Court. Orange alert issued for thunder squall conditions in Rajasthan, Gujarat, West Madhya Pradesh, Odisha and coastal Andhra Pradesh today. And in women's cricket, third and final T20 international between India and hosts England to be played in Taunton tonight. And with that, we end the midday news.
1: Namaskar. Akashvani se dopahar samachar ke saath mein Vishal Sharma. मुख्य समाचार. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया. राष्ट्रपति ने सभी वर्गों के विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति पर जोर दिया. सरकार ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किए. पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए. भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई. राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी. और महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा. अब समाचार विस्तार से. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है. ये लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है. आज नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सही विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें.
2: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं. छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है. ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ने रोकता था. लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त की है.
1: राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जनजातीय समुदायों के युवाओं को सशक्त बनाने और उनका उत्थान करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है.

0: शक्ति है।
1: युवा हमारे राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य की प्रतीक है। मेरी सभी युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपनी जड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े तो सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्ति योजनाएं केवल वित्तीय सहायता का साधन नहीं है, बल्कि ये युवाओं को सपनों को देखने का अधिकार देती हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्तियां उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खोलती हैं जिनमें अपार प्रतिभा है, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण वे प्रगति करने से वंचित रह जाते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि युवा राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से आग्रह किया कि वे अपनी जड़ों को न भूलें।
1: भारत को वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य से आगे बढ़ रहे हैं। इस लक्ष्य के प्राप्ति में आप जैसे युवाओं की अहम भूमिका है। मुझे विश्वास है कि आप जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, समाज और राष्ट्र के निर्माण में आपका सक्रिय योगदान रहना चाहिए।
2: गृह मंत्रालय ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। इसमें आव्रजन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण, समय सीमा और अपील प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस संशोधन के अंतर्गत भारत आने के बाद 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी पंजीकरण कराया जा सकता है। इससे पहले 180 दिन की अवधि समाप्त होने के 14 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य था। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशाटिले से भेंट की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अवसरों पर चर्चा की। डॉ जयशंकर ने आपसी साझेदारी को मजबूत करने के लिए श्री माशाटिले की सराहना की। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि भारत और दक्षिण अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करना चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमरीका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन आज मुंबई पहुंचे। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर महाराष्ट्र के राज्यपाल विष्णुदेव वर्मा ने उनका स्वागत किया। प्रोटोकॉल मंत्री जयकुमार रावल भी हवाई अड्डे पर उपस्थित थे। राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन आज मुंबई में व्यापार और उद्योग जगत से बात करेंगे और विभिन्न स्थलों का दौरा करेंगे। वे आज शाम लोकभवन में उनके सम्मान में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कोलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इनको न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है। मंत्रालय ने सलाह दी है कि ऐसे व्यक्ति जो पिछले 21 दिन में इबोला प्रभावित देश से यात्रा करके आए हैं, उन्हें बुखार, सिरदर्द और मांसपेशियों में दर्द या दस्त या बिना किसी स्पष्ट कारण के रक्तस्राव जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो वे स्वयं को लोगों से अलग कर लें। मंत्रालय ने कहा कि ऐसे व्यक्ति स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों को तुरंत सूचित करें। नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। भारत ने इबोला वायरस से निपटने के लिए अफ्रीका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र CDC को चिकित्सा सहायता की 43 टन की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस खेप में निदान, निगरानी उपकरण और दवाएं शामिल है। श्री जयशंकर ने कहा कि

0: इससे अफ्रीकी संघ के सदस्य देशों को इबोला वायरस से निपटने में मदद मिलेगी। केरलम विधानसभा में कांग्रेस नेता शानिमोल उस्मान उपाध्यक्ष चुने गए हैं। शानिमोल उस्मान को 99 वोट मिले, जबकि विपक्षी उम्मीदवार मोहम्मद मोहसिन को 34 वोट प्राप्त हुए। भारतीय जनता पार्टी के तीनों सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: CBSE ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। बोर्ड ने बताया कि सुरक्षा बढ़ाने के लिए आधार सत्यापन को शामिल किया गया है। जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है, उनके माता पिता, रिश्तेदार या अभिभावक के आधार कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। विद्यार्थियों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रूपए और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 25 रूपए का भुगतान करना होगा। शुल्क का भुगतान केवल UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग जैसे ऑनलाइन माध्यमों से किया जा सकता है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने के आरोप में आजमगढ़ से एक युवक को गिरफ्तार किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह आतंकवादी गिरोह नौजवानों को अहम व्यक्तियों और संस्थानों की निगरानी करने, उनकी हत्या करने, राजनीतिक दलों के कार्यालयों पर बमबारी करने, सुरक्षा एजेंसियों के कर्मचारियों की हत्या करने और उनके कार्यालयों और मुख्यालयों पर हमला करने जैसे अपराध को अंजाम देने के लिए उकसा रहा था। खुफिया जाँच के दौरान आजमगढ़ निवासी मोहम्मद शेख का पता चला, जो इस गैंग से जुड़ा हुआ था। शेख पाकिस्तान और दुबई के फोन नंबरों का उपयोग करके व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए शहजाद भट्टी के आतंकवादी गिरोह से जुड़ा हुआ था। वो अपने साथियों और अन्य लोगों को भी आतंकवादी गिरोह में शामिल होने और गैर कानूनी काम को अंजाम देने के लिए भड़का रहा था। शहजाद भट्टी के गिरोह ने मोहम्मद शेख को एक राजनीतिक पार्टी की महिला नेता को धमकाने और उसकी हत्या करने का काम सौंपा था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रवर्तन निदेशालय ED मुंबई, सूरत, अंकलेश्वर और राजकोट में 20 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। निदेशालय ने सलीम इस्माइल डोला और उसके सहयोगियों द्वारा संचालित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठित मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ ये कार्रवाई की है। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA 2002 के प्रावधानों के तहत की जा रही है। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोने की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। निदेशालय ने विदेश से लाए गए 2 किलो 600 ग्राम सोने को जब्त किया है, जिसकी कीमत लगभग 4,20,00,000 रुपए है। खुफिया जानकारी के अनुसार अधिकारियों ने दुबई से आए 2 यात्रियों को पकड़ा। मामले की जांच की जा रही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश के सीधी जिले में 1 वर्ष में प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद 53 गर्भवती महिलाओं की कथित मृत्यु के संबंध में राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। एक मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए आयोग ने इस मामले में 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। देश भर की 42 उत्कृष्ट पंचायतों को ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आज तेलंगाना का स्थापना दिवस है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CV राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर राज्य के लोगों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तेलंगाना को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परिश्रमी लोगों का साथ मिला है। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राज्य समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और जीवंत परंपराओं से संपन्न है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि तेलंगाना का इतिहास और गौरवशाली संस्कृति साहस, दृढ़ संकल्प और संघर्ष का प्रतीक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच अमेरिका की मध्यस्थता से हुए संघर्ष विराम पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। समझौते के बाद क्षेत्र में तनाव कम होने की संभावना थी, लेकिन हाल के सैन्य उल्लंघनों से इसकी स्थिरता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
3: ईरान ने लेबनान में इजरायली हमले जारी रहने पर अमेरिका के साथ सभी प्रकार की बातचीत रोक दी है। अमेरिका के साथ किसी भी युद्ध विराम समझौते के लिए ईरान ने लेबनान पर इजरायली हमले रोकने की पूर्व शर्त रखी थी। उसने होर्मुज जल डमरू मध्य पूरी तरह से बंद करने और लाल सागर के मुहाने पर स्थित बाब अल मंदेब जल डमरू मध्य सहित अन्य मोर्चे खोलने की बात कही है। ईरान का कहना है कि लेबनान और गजा में इजरायली

0: हमले पूरी तरह बंद होने तक अमेरिका से कोई बातचीत नहीं होगी। लेबनान में जारी संघर्ष अमेरिका और ईरान के बीच संभावित युद्ध विराम समझौते में एक बड़ी बाधा बन चुका है। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: नेपाल की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं से भी मिलेगा। मुलाकात का उद्देश्य दोनों पार्टियों के बीच लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और जनकेंद्रित राजनीतिक पहुंच पर विचारों का आदान प्रदान करना है।

0: 7,775 जबकि निफ्टी 140 अंक की वृद्धि के साथ 23,523 पर कारोबार कर रहा था। और अब बात खेलों की। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल तक आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में तेज बारिश का अनुमान है। अगले 2 से 3 दिन तक हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, झारखंड, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, रायलसीमा, सौराष्ट्र और कच्छ, तेलंगाना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने सभी वर्गों के विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति पर जोर दिया। सरकार ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किए। पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी। और महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार। मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय दोपहर के 2:30 हुए हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदना भक्ति संगीत के। इस कार्यक्रम में आज आप सुन सकेंगे किन्ने मठ के लम्बत इंजन गिल्सन और साथियों से बौद्ध भक्ति गीत। तो लीजिए पेश है कार्यक्रम वंदना।

Quan Jo,

Margin of the margin of the

I'm not going to be able to do that.

Jawa,

I don't know.

अंजन गिल्सन और साथियों से बोध भक्ति गीत। इसी के साथ आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनी यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय दोपहर के 3 बज चुके हैं। श्रोताओं प्रस्तुत है विभिन्न प्रांत के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। इस कार्यक्रम में आज आप सुन सकेंगे कुमार सानू की आवाज में चंद बांग्ला गीत।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू की आवाज में चंद बांग्ला गीत। इसी के साथ आज का विभिन्न प्रांत के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:30 हुए हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम मेरी बात। इस कार्यक्रम में आज आप सुन सकेंगे पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय तवांग की 11वीं ह्यूमैनिटीज कक्षा की छात्रा छुरतन समूह से प्लास्टिक मुक्त जीवन का महत्व विषय पर चंद शब्द।
1: नमस्कार एवं ताशी दिलेक। मैं छुरतन समूह पीएम श्री चेनवी तवांग कक्षा 11वीं की छात्रा। आकाशवाणी तवांग से प्रसारित दैनिक कार्यक्रम मेरी बात में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में मेरी वार्तालाप का विषय है प्लास्टिक फ्री जीवन का महत्व। प्लास्टिक आज हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम प्लास्टिक बोतल, थैली, डिब्बा और ना जाने क्या क्या। हमें यह सुविधाजनक तो लगता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही प्लास्टिक आज हमारे पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए कितना खतरनाक है। प्लास्टिक की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह जल्दी नष्ट नहीं होती है। एक प्लास्टिक को नष्ट होने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं और यह हमारी पानी, हवा और मिट्टी को प्रदूषित करता है। प्लास्टिक मानव स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। प्लास्टिक से निकलने वाली जहरीले गैस हमारी भोजन और पानी में मिलकर गंभीर बीमारियां पैदा करते हैं, जैसे कि कैंसर। प्लास्टिक में मौजूद BPA जैसे गैस कैंसर का कारण बन सकते हैं और साथ ही शरीर की बीमारी, त्वचा रोग आदि। प्लास्टिक प्रदूषण आज केवल मानव जीवन का नहीं बल्कि जानवरों और समुद्र जीव पर भी गंभीर खतरा है। जब यह प्लास्टिक पानी में पहुंचता है तो मछली और समुद्र जीव इसे भोजन समझकर निगल लेते हैं और अपनी जान गवा बैठते हैं। प्लास्टिक आज शहरों की समस्या नहीं बल्कि इसका सबसे गहरा असर किसानों की खेत पर पड़ता है। खेतों में फैले प्लास्टिक मिट्टी, फसल और किसान तीनों को नुकसान करता है। यह मिट्टी की उर्वरता को खत्म करता है, फसल की पैदावार पर भी असर पड़ता है। साथियों, अब सवाल यह उठता है कि क्या इस समस्या को रोक सकते हैं? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल। अगर हम छोटे छोटे कदम उठाए तो बड़ा बदलाव संभव है। हमें कपड़े या जूट के थैली को इस्तेमाल करना चाहिए। प्लास्टिक की बोतलें की जगह कांच की बोतल अपनाइए। दूसरों को भी प्लास्टिक के नुकसान के बारे में जागरूक करें। याद रखिए, बदलाव की शुरुआत खुद से होती है। अगर हम आज नहीं जागे तो आने वाले पीढ़ियों हमें कभी माफ नहीं करेंगे। हमें यह समझना होगा कि पृथ्वी हमारी निजी संपत्ति नहीं है बल्कि यह हमारी जिम्मेदारी है। आज पूरे विश्व में प्लास्टिक मुक्त जीवन अपनाने की आवश्यकता है। भारत जैसे महान देश में

0: जहाँ प्रकृति को माँ का दर्जा दिया जाता है, वहाँ प्लास्टिक प्रदूषण एक गंभीर चिंता का विषय है। हमें अपने कृतियों को समझते हुए स्वच्छ और सुरक्षा पर्यावरण को देश में स्थापित करना होगा। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, अगर हम स्वच्छ हवा, शुद्ध जल और स्वस्थ जीवन चाहिए तो हमें आज से ही प्लास्टिक मुक्त जीवन अपनाना होगा। आइए हम सब मिलकर संकल्प ले कि प्लास्टिक को ना कहेंगे और प्रकृति को हाँ कहेंगे, प्लास्टिक का कम उपयोग करेंगे और पर्यावरण को सुरक्षित बनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
1: श्रोताओं, अभी आपने सुना पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय तवांग की 11वीं ह्यूमैनिटीज कक्षा की छात्रा छोरतन सोमो से प्लास्टिक मुक्त जीवन का महत्व विषय पर चंद शब्द। इसी के साथ कार्यक्रम मेरी बात यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:34 हुए हैं। हमारे अगले कार्यक्रम से पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।
2: मेहरबान कदरदान बच्चे बूढ़े और जवान, सौ बात की एक बात है सही, सिर्फ पैसे भेजने के लिए QR स्कैन करते हैं या पिन डालते हैं, पैसे मिलने के लिए नहीं।
3: RBI कहता है QR कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से।
1: श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम नारी संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आप सुन सकेंगे तनिष्क सांगवी और सचिन जिगर की आवाज में फिल्म अंग्रेजी मीडियम से। शब्द रचना है जिगर सरैया के, वह संगीत है सचिन जिगर का।

में गीतकार थे गुलजार व संगीत था ए आर रहमान का। आप सुन रहे कार्यक्रम नारी संगीत आकाशवाणी के तवंग केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे कुमार द्वारा शतपथ फिल्म दोस्ताना से। शंकर महादेवन, सुनिधि चौहान और विशाल ददलानी की आवाज में इस गीत को संगीत से संवारा है विशाल शेखर ने।

फिल्म दोस्ताना के संगीत के साथ कार्यक्रम नारी संगीत यहीं पर समाप्त हुआ। हमारा अगला कार्यक्रम इस संदेश के बाद।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय दोपहर के 3:50 हुए हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी। कार्यक्रम का पहला गीत आप सुन सकेंगे अरिजीत सिंह की आवाज में फिल्म ब्रह्मास्त्र से। शब्द रचना है अमिताभ भट्टाचार्य की, वह संगीत है प्रीतम का।

अभी आपने सुना फिल्म जब हैरी मेट सेजल से ये गीत अरिजीत सिंह की आवाज में गीतकार थे इरशाद कामिल व संगीत था प्रीतम का। आप सुन रहे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी आकाशवाणी के तवंग केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे इरशाद कामिल द्वारा शतपथ फिल्म तमाशा से। अरिजीत सिंह और अलका याग्निक की आवाज में इस गीत को संगीत से संवारा है ए आर रहमान ने।

अभी आपने सुना फिल्म सूर्यवंशी का गीत अरिजीत सिंह और नीति मोहन की आवाज में गीत करते रश्मि विराग व संगीता जामवाट का। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे मुन्ना माइकल फिल्म से विशाल मिश्रा और सुनीति चौहान की आवाज में। कुमार के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है विशाल मिश्रा ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी का अंतिम गीत आप सुन सकेंगे फिल्म बुल बुलैया 2 से अरिजीत सिंह और तुलसी कुमार की आवाज में। शब्द रचना है अमिताभ भट्टाचार्य, के संगीत है प्रीतम का।

फिल्म बुलबुल लेयर 2 के संगीत के साथ कार्यक्रम गीत मंजरी यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 4:30 हुए हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग। इस कार्यक्रम में आज आप सुन सकेंगे उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान से ख्याल। राग है बीम पलासी व तबले पर संगतिया है शारिफ अहमद खान ने। तो लीजिए पेश है कार्यक्रम राग रंग।

Ma pa ni sa ga ma sa ni ma ga pa ni sa ga pa ni sa ga ma pa.

श्रोताओं, आप सुने शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग। ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। अब से थोड़ी देर में यानी 4:45 पर आप सुन सकेंगे आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार व 4:55 पर अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने सभी वर्गों के विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति पर जोर दिया। अरुणाचल प्रदेश स्थित राजीव गांधी विश्वविद्यालय ने अंतर्राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग ढांचा IIRF रैंकिंग में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की श्रेणी में 14वां स्थान प्राप्त किया। अखिल अरुणाचल प्रदेश छात्र संघ अफसू ने अरुणाचल प्रदेश में मिसिंग समुदाय पर इनर लाइन परमिट ILP प्रणाली लागू किए जाने के विरोध में असम स्थित तका मिसिंग पोरिंग कबांग TMP के द्वारा व्यक्त किए गए रुख को सख्ती से खारिज किया। जापान में आयोजित होने वाले 5वें एशियाई पैरा खेल आईची नागोया 2026 के लिए भारतीय टीम में अरुणाचल प्रदेश के पैरा एथलीट होजेम मागोम का चयन। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया। राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी। और महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है। ये लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। आज नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा है कि सही विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति कर सके।
1: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
0: राष्ट्रपति ने कहा है कि केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जनजातीय समुदाय के युवाओं को सशक्त बनाने और उनका उत्थान करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।
1: युवा हमारे राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य की प्रतीक है। मेरी सभी युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपने जड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े तो सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि छात्रवृत्ति योजना केवल वित्तीय सहायता का साधन नहीं बल्कि ये युवाओं के सपनों को देखने का अधिकार देती है। उन्होंने कहा है कि छात्रवृत्तियां उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खोलती है जिनमें अपार प्रतिभा लेकिन संसाधनों की कमी के कारण वे प्रगति करने से वंचित रह जाते हैं। राष्ट्रपति ने कहा है कि युवा राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्ज्वल भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से आग्रह किया है कि वे अपनी जड़ों को कभी न भूलें।
1: भारत को वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य से आगे बढ़ रहे हैं। इस लक्ष्य के प्राप्ति में आप जैसे युवाओं की अहम भूमिका है। मुझे विश्वास है कि आप जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, समाज और राष्ट्र के निर्माण में आपका सक्रिय योगदान रहना चाहिए।
0: अरुणाचल प्रदेश के पापुमपारे जिले के दोईमुख स्थित राजीव गांधी विश्वविद्यालय RGU ने अंतर्राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग ढांचा IIRF रैंकिंग में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में श्रेणी में 14वां स्थान प्राप्त किया है। इसके साथ ही विश्वविद्यालय ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में सर्वोच्च रैंकिंग प्राप्त केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए शिक्षा राज्य मंत्री PD सोना ने कहा है कि यह सफलता विश्वविद्यालय परिवार की शैक्षणिक उत्कृष्टता, सक्षम अधिगमन प्रणाली को सुदृढ़ अनुसंधान, नवाचार तथा सुशासन के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता का परिणाम है। अखिल अरुणाचल प्रदेश छात्र संघ अफसू ने अरुणाचल प्रदेश में मिसिंग

0: समुदाय पर इनर लाइन परमिट आईएलपी प्रणाली लागू किए जाने के विरोध में असम स्थित तका मिसिंग पोरिनकबांग टीएमपी के द्वारा व्यक्त किए गए रुख को सख्ती से खारिज कर दिया है। संघ ने कहा है कि आईएलपी एक गैर समझौतावादी संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा व्यवस्था है जो सभी गैर अरुणाचल प्रदेश अनुसूचित जनजाति नॉन एपीएसटी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होती है और इसमें किसी प्रकार का अपवाद नहीं हो सकता। आपसू के अध्यक्ष मेजर ताकू ने टीएमपी के बयान के जवाब में कहा है कि संघ मिसिंग समुदाय के क्षेत्र ऐतिहासिक संबंधों का सम्मान करता है और अरुणाचल प्रदेश की कई जनजातियों के साथ उनके घनिष्ठ संबंधों को भी स्वीकार करता है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि ऐसे संबंध किसी भी व्यक्ति या समुदाय को उस कानूनी व्यवस्था से छूट देने का अधिकार नहीं बन सकते जिनका उद्देश्य राज्य के स्वदेशी लोगों के हितों और अधिकारों की रक्षा करना हो। जापान में आयोजित होने वाले पांचवें एशियाई पैरा खेल आईची नागोया 2026 के लिए भारतीय टीम में अरुणाचल प्रदेश के पैरा एथलीट बोजे मारबूम का चयन किया गया है। ये प्रतियोगिता आगामी 18 से 24 अक्टूबर तक आयोजित की जाएगी। इस उपलब्धि पर उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने सोशल मीडिया पोस्ट में एथलीट बोजे मारबूम को बधाई देते हुए कहा है कि ये सफलता उनके अटूट संकल्प, कड़ी मेहनत, धैर्य और खेल प्रतिभा का प्रमाण है और उनकी प्रेरणादायक यात्रा अरुणाचल प्रदेश तथा पूरे देश के अनेक युवा खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पूर्ण मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। यह पोर्टल आगामी 6 जून तक खुला रहेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: सीबीएसई ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। बोर्ड ने बताया कि सुरक्षा बढ़ाने के लिए आधार सत्यापन को शामिल किया गया है। जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है उनके माता पिता, रिश्तेदार या अभिभावक के आधार कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। विद्यार्थियों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रुपए और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 25 रुपए का भुगतान करना होगा। शुल्क का भुगतान केवल यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग जैसे ऑनलाइन माध्यमों से किया जा सकता है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है। मंत्रालय ने सलाह दी है कि ऐसे व्यक्तियों जो पिछले 21 दिनों में इबोला प्रभावित देश की यात्रा करके आए हैं उन्हें बुखार, सिर दर्द और मांसपेशियों में दर्द, दस्त या बिना किसी स्पष्ट कारण के रक्तस्राव जैसे लक्षण दिखाई दे तो वे स्वयं को लोगों से दूर कर ले। मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे व्यक्ति स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों को तुरंत सूचित करे। नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भारत ने इबोला वायरस से निपटने के लिए अफ्रीका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र सीडीसी को चिकित्सा सहायता की 43 टन की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि इस खेप में निदान, निगरानी उपकरण और दवाएं शामिल है। श्री जयशंकर ने कहा है कि इससे अफ्रीकी संघ के सदस्य देशों को इबोला वायरस से निपटने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने के आरोप में आजमगढ़ में एक युवा को गिरफ्तार किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह आतंकवादी गिरोह नौजवानों को अहम व्यक्तियों और संस्थानों की निगरानी करने, उनकी हत्या करने, राजनीतिक दलों के कार्यालयों पर बमबारी करने, सुरक्षा एजेंसियों के कर्मचारियों की हत्या करने और उनके कार्यालयों और मुख्यालयों पर हमला करने जैसे अपराध को अंजाम देने के लिए उकसा रहा था। खुफिया जाँच के दौरान आजमगढ़ निवासी मोहम्मद शेख का पता चला जो इस गैंग से जुड़ा हुआ था। शेख पाकिस्तान और दुबई के फोन नंबरों का उपयोग करके व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए शहजाद भट्टी के आतंकवादी गिरोह से जुड़ा हुआ था। वो अपने साथियों और अन्य लोगों को भी आतंकवादी गिरोह में शामिल होने और गैर कानूनी काम को अंजाम देने के लिए भड़का रहा था। शहजाद भट्टी के गिरोह ने मोहम्मद शेख को एक राजनीतिक पार्टी की महिला नेता को धमकाने और उसकी हत्या करने का काम सौंपा था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल तक आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया। अगले 2 से 3 दिन तक हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, झारखंड, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, रायलसीमा, सोरसट और कच्छ, तेलंगाना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समय अनुसार रात 11 बजे से शुरू होगा। इजराइल

Timuk, timuk ni nangar juga sekarang makan usungan timuk ignorance ni awak je cajum ni om dah. Jambai yang ready noy na light ngoto deja. Ijik se jambai yang laga ready thi ni om dah. Jambai yang ke ud ngoto brigosu thangka ngoto brigosu je jambai yang ngomang arah senjeng ngoto thamna kesi na waya de sujo ni na koi me la nerdi me. Jambai kesi ne sur sonya sona ora ud mat jemenam bina simbol jenam kumzenge ora ijik se bejane nga. Jambai yang thangka brigosu laga utta da surji brigosu odim rilije. Tak ijik suje drama. Jisun drama, jisun drama, kahang bukan cewa nama orang lah. Jisun drama je, jisun drama, tewa pibur, om jisun ma paman drama la cahsel lo. Cahsel drama, nyurma, pamo, ni sumne macam. Drama, nyurma, pamo. Quality sumnum jisun drama sya. Idam sya mana suka sya mano quality jisun drama sya sumnum. Nada je drama ni na, drama menum sya desh nongar drama ni beritum. Spelling na correction ya kosum sukce ni na berit saru sarum. Sarbanang ore buzunashi spelling na takda utnai getemim na kyanang sibiruime chatman ma ore drol manyana drol nyana miti tsiga mar dem su go noina udiya shongyu chesha drol nyedom miti khoada nyen so dong en nga kouya ye su go nona udiya tenju che drol nyedom safe ya yu che chatman na che laro ye yu che safe sha drol ore drol manye go che female gender ge mati udiya ren je gender male wa female wa अच्छी न्यूट्रल वाइन है ना फीमेल और ए फीमेल के रूप बुद्धा चार्सल ड्रोलमा न्यूरमा है ना कहते हैं यही लोग ने शोर्जियन या यम यम दा शोर्जियन न्यूरमा है ना स्विफ्ट इंग्लिश का मत मासूना तादाम मालूम या कोई ना देश नालंग मालूम या कोई ना शोर्जियन दादरां डिवोमेन यम ये दालम दा स्विफ्ट नो ना जिस उन टाइम जे सीने ना भूमि की फेमिनिन के उम्म रूबी में वाले शोमना सीने अमना से रांशे चवा मांशुनो में वाले इचिक से न्यूरमा आने उम इचिक से कॉलेज का एग्जाम लानो इन्हें शोर्जियन जिसन चमाने में के स्वाता भी वो एग्जाम आउंड शो शोर्जियन तोसा तोसा कोसो इन्हें जिसन चमाने में के वो समझागर चासे ड्रामा इसी शुरू जे न्यूरमा न्यूर ने ना स्विफ्ट तोसा तोसा शोर्जियन आर शा पेंडो या जुम्ने हो डिले माये जुम्ने हों दा फाइल प्रोजेक्ट ना शुंग ऑफिस ओदो डिपार्टमेंट ओदो योर डिले मगे जुम्ने शोर्जियन शोर्जियन या जुम्ने चासे ड्रामा न्यूरमा इसी सुन बचे पामो Panya was a dopa, Banya dana, Shusme, Chanju Sempa, Panya was a po, brave. Monya was a general madim, da. Brave him, yeda, Bishom dine, brave. Brave ne menge pugos of Jumzin seeing yen out there, also Lugutinum, da. Chisun to mum, banana, some major winyeje, Chanju Sampa Kuduga, some major winyeje, that chick commember menace number, Tabayaya, Ichik do a Sanji tename or Ichik Sanji tis a Jesun to Mashasika now in another, you know. Number the one, Yamlena, number the Wayadu, the Shukji in a Keba glue to lawyer, male, or a pub glue to lawyer, Keba glue to lawyer, is it Sanji Junior, Tosamanam Yadu Shogunye, Sanjas Utkanam. Utkanam or Jason Tomase, your Lensi in Anglojina, Yetawan in a Keba glue long sumanuni, and a pumig glue, or a feminine glue, Rang Toga Koya, and a Sanji Junior, Jason Tomase Utmadiaunda. उत्मादी अवर संचित दर जमाने शिनिया ता इनाम पाव नहीं था शनमयाना इनाम सुई थी नहीं पाव नहीं ता ता ता उदिन मादी अगं सुगामुन भूमि लुक थोगा सांजे अगं कुंपनी ता इनाम नंबर दावा दे रसुनी पामो ने मेंग दिव्य जिसुन ड्रमा न्यूरमा पामो क्या नो दे ता जिसुन ड्रमा जी क्वालिटी सिलो निया ता सांगे सरो शुक्ले लेगसी आ गोसलो और बिर्श लेगते नोमे लेगसी सिलो ने सिमजें गांबो गुदों ना या युजेशा लेगा ने दम ता सांगे थी से जो सिमजें शे पेंडो गोदे या में दे युलो और ला सांगे गांबो के पेंडो या जो को पावर दे चोक थी का पुंगे ना उत पुंजो को नेवा चेशा जिसन चुमा ने दम क्या नो China doji new way, the China doji neoji, cadentisha combustion was so in the Tangar Church of Juinator, Legacy, Yaju in the Barche, Yawaji, no rhyme, I'll make combustion, or a Barche. Rans a co duty in a Prebrega chick Namsi, Burian, chick some of Tonai, Bursis, Kunti Rea, Barche de Mere. Within Barche monochugan, Rangi, companion dating modoti, Solonina, China doji. Orella. Is it Mixima is the Kenya Morella, Mixima? Mixima Grambur, Mimezewe, Terchin, Cheresig, Jimmy Chambe Ombo, Chambeyan, Ejik Dubu.

मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय शाम के 6:10 हुए हैं। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम जरोखा। कार्यक्रम जरोखा में हम आपको अवगत करवाते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से। जरोखा में पहले सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। आज शाम 6:20 पर मनपा कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यक्रम शेदन लेरिम, जिसमें आप सुन सकेंगे ग्यांगोंग अनि गुनपा के अनि थुतन चुजंग उमजे और साथियों से बौद्ध भक्ति गीत। आज शाम 7:00 आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार। आज शाम 7:10 पर कार्यक्रम पोइम ऑफ द डे, जिसमें आप सुन सकेंगे एलडी स्कॉलर्स होम स्कूल के 5वीं कक्षा की छात्रा दुंडुप वांगमू दोंगे से एक कविता। कविता का शीर्षक होगा आइसक्रीम मैन। शाम 7:11 पर कार्यक्रम एक ही फिल्म से के अंतर्गत फिल्म बेमिसाल के चंद गीत, जिसमें पहला गीत आप सुन सकेंगे लता मंगेशकर और आरडी बर्मन की आवाज में, दूसरा गीत आप सुन सकेंगे लता मंगेशकर, किशोर कुमार और सुरेश वाडकर की आवाज में, और तीसरा गीत आप सुन सकेंगे किशोर कुमार की आवाज में। आज शाम 7:25 पर कार्यक्रम अपनी धरती अपने लोग, 7:45 पर आकाशवाणी ईटानगर से प्रसारित प्रादेशिक समाचार व 7:50 पर रीजनल न्यूज। आज शाम 7:55 पर देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम क्वामी तराने के अंतर्गत आप सुन सकेंगे फिल्म फाइटर्स से विशाल ददलानी और शेखर रावजियानी की आवाज में एक देशभक्ति गीत। आज रात्रि 8:00 आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप पर दिए गए फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत। 8:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित स्पोर्ट्स स्कैन, 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि 9:00 न्यूज एट 9। तो श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी। अब आप सुनिए हमारे केंद्र से कल यानी 3 जून 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। रोजाना की तरह हमारा कल का प्रसारण आरंभ होगा दोपहर 2:00 अंग्रेजी समाचार के साथ, 2:15 पर हिंदी में समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कल दोपहर 2:30 पर कार्यक्रम वंदना, जिसमें आप सुन सकेंगे मनहर उदास की आवाज में चंद हिंदी भक्ति गीत। कल दोपहर 3:00 विभिन्न प्रांत के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत, जिसमें आप आनंद ले सकेंगे जयंता हजरिका की आवाज में चंद असमिया फिल्मी व आधुनिक गीत। कल दोपहर 3:30 पर कार्यक्रम मेरी बात, जिसमें आप सुन सकेंगे पीएम श्री जवाहर नवोदया विद्यालय तवंग की 11वीं साइंस कक्षा की छात्रा दिक्की लामू से जलवायु परिवर्तन का प्रकृति समुदाय पर प्रभाव विषय पर।

چند شبد कल दोपहर 3:33 पर कार्यक्रम नारी संगीत, जिसमें आप सुन सकेंगे फिल्म नीरजा से कविता सेठ की आवाज में गीत, फिल्म दावते इश्क से शालमली खोलकरे की आवाज में गीत, फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से श्रेय घोषाल, उदित नारायण और विशाल शेखर की आवाज में गीत, और फिल्म केदारनाथ से देव नेगी की आवाज में गीत। कल दोपहर 3:50 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी, जिसमें आप सुन सकेंगे फिल्म माय नेम इज खान से राहत फतेह अली खान, शंकर महादेवन और ऋचा शर्मा की आवाज में गीत, फिल्म मौसम से शाहिद मालिया की आवाज में गीत, फिल्म जब तक है जान से हर्षदीप कौर की आवाज में गीत, फिल्म बर्फी से पपोन और सुनिधि चौहान की आवाज में गीत, फिल्म हीरो से मोहित चौहान और प्रिया पंचल की आवाज में गीत, फिल्म पुष्पा दर्राय से सुनिधि चौहान की आवाज में गीत, फिल्म बार बार देखो से सुनिधि चौहान, नीति मोहन और अरमान मलिक की आवाज में गीत, फिल्म शिवाय से अरिजीत सिंह और सुनिधि चौहान की आवाज में गीत, फिल्म रावण से एकॉन, विशाल ददलानी और श्रुति पाठक की आवाज में गीत, फिल्म दावते इश्क से शालमली खोलकरे की आवाज में गीत, और फिल्म जिंदगी न मिलेगी दोबारा से डी सरेजो, क्लिंटन सरेजो और लॉय मेंडेंसा की आवाज में गीत। कल शाम 4:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग, 4:45 पर आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार, 4:55 पर अंग्रेजी में समाचार। मनपा कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यक्रम नमथार कल शाम 5:05 पर दैनिक मुख्य सूचना मनपा में श्री संगे टशी से, 5:35 पर कार्यक्रम नंगछे क्लब, और शाम 6:20 पर कार्यक्रम चेदन लेरिम, जिसमें आप सुन सकेंगे ग्यांगोंग अनि गुनपा के अनि थुतन छेजंग उमजे और साथियों से बौद्ध भक्ति गीत का शेष भाग। कल शाम 7:00 आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार। कल शाम 7:10 पर आप श्रोताओं द्वारा फोन पर दिए गए फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी, जिसे संचालित करेंगी दर्जी ड्रामा। कल शाम 7:45 पर आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार, 7:50 पर रीजनल न्यूज, शाम 7:55 पर कार्यक्रम क्वामी तराने के अंतर्गत आप सुन सकेंगे एक देशभक्त गीत फिल्म बुज द ब्राइड ऑफ इंडिया से अरिजीत सिंह की आवाज में। कल रात्रि 8:00 आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप पर दिए गए फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत, कल रात्रि 8:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स स्कैन, 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि के ठीक 9:00 न्यूज एट 9। तो श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। इन्हीं जानकारी के साथ आज का कार्यक्रम जरोखा यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम आप सुन सकेंगे मनपा में।

नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। भारत ने कहा है कि नेपाल और भारत के द्विपक्षीय संबंधों में किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात नेपाल के प्रधानमंत्री की भारत नेपाल सीमा को लेकर टिप्पणी और उसके बाद नेपाल के

0: विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान के बारे में पूछे गए सवाल के उत्तर में कही। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% सीमांकन हो चुका है।
1: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं, उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अवांछित संदर्भों को भी खारिज किया। श्री जायसवाल ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगी। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि डेल्सी रॉड्रिक्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। ये वार्ता ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा, दवा और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर केंद्रित रहेगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातीले से मुलाकात की। दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति के साथ दक्षिण अफ्रीका सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी था। दोनों नेताओं ने भारत दक्षिण अफ्रीका द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर सार्थक वार्ता की। वार्ता में व्यापार, निवेश, रक्षा सहयोग, कौशल विकास और जन जन संबंधों को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया गया। केंद्र सरकार ने आव्रजन और विदेशी नियमों में संशोधन की अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार जो विदेशी नागरिक भारत में 180 दिनों के लिए आते हैं और अपने वीजा की अवधि बढ़ाना चाहते हैं, तो उन्हें वीजा की समाप्ति से पहले ही अपना पंजीकरण कराना होगा। ये पंजीकरण पहले 180 दिन की अवधि पूरी होने के बाद 14 दिन के भीतर कराया जा सकता था। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु और केरलम में अगस्त्यमलाई पारिस्थितिकी परिदृश्य के संरक्षित क्षेत्रों में अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए समयबद्ध अतिक्रमण उन्मूलन योजना तैयार करने और इसे प्राथमिकता के आधार पर लागू करने का निर्देश दिया है। शीर्ष न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि उन सभी 118 वर्तमान और सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के खिलाफ अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए जिन्होंने अतिक्रमण किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर वर्तमान में 8,000 से अधिक उपयोगकर्ता एक साथ काम कर रहे हैं। अब तक 16,000 से अधिक छात्र सफलतापूर्वक अपना मूल्यांकन जमा कर चुके हैं। बोर्ड ने बताया कि पोर्टल की सेवा में व्यवधान डालने के लिए 2 मिनट के अंदर लगभग 15 लाख आवेदन भेजे गए। बोर्ड ने कहा कि सिस्टम पर उपलब्ध फाइलों तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के 1 लाख से अधिक प्रयास हुए। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से शुरू होगा। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु और हरिहरन अमसा करुणन तथा एमआर अर्जुन की जोड़ी ने प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Yeah, I am from LD Scholars Home and I study in class 5. Today I am going to recite a poem, and my poem is Ice Cream Man. When summer's in the city and drinks a blaze of heat, the ice cream man with his little cart goes trekking down the street. Beneath his round umbrella, oh, what a joyful sight to see him fill the cones with mounds of cooling brown and white. Vanilla, chocolate, strawberry or chilly things to drink, from bottle full of frosty freeze, green, orange, white or pink. His card might be a flower bed of roses and sweet peas. The way the children cluster around, as thick as honeybees. Thank you.
1: अभी आपने सुना एलडी स्कॉलर्स होम स्कूल की पांचवी कक्षा की छात्रा दुनरुप वांगमुदोमगे से एक कविता कविता का शीर्षक था आइसक्रीम मैन। इसके साथ कार्यक्रम पोएम ऑफ द डे यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय शाम के 7:11 हुए हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम ए की फिल्म से। इस कार्यक्रम में आज आप सुन सकेंगे फिल्म बेमिसाल से चंद गीत। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत, लता मंगेशकर, किशोर कुमार और सुरेश वाडकर की आवाज में। शब्द रचना है आनंद बख्शी के, वसंगीत है आर डी बर्मन का।

श्रोताओं, आप सुन रहे कार्यक्रम एक ही फिल्म से के अंतर्गत फिल्म बेमिसाल से चंद गीत। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत किशोर कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी द्वारा शब्द इस गीत को संगीत से संवारा है आर डी बर्मन ने।

फिल्म बेमिसाल के संगीत के साथ कार्यक्रम ए की फिल्म से यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय शाम के 7:23 हुए हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम अपनी धरती अपने लोग। इस कार्यक्रम में आज आप सुन सकेंगे पूजनीय प्रोफेसर जमदम रिम्पोचे से वार्ता। वार्ता का विषय है सुख और तनाव मुक्त जीवन।

प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के अंतर्गत राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी पारनाइक रिटायर्ड ने आज प्रथम महिला अनाघा पारनाइक के साथ ईटानगर स्थित लोकभवन में तेलंगाना, सिक्किम और गोवा के राज्य स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया। राज्यपाल ने तीनों राज्यों के लोगों को शुभकामनाएं देते हुए राष्ट्र की प्रगति, सांस्कृतिक समृद्धि और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने में उनके अमूल्य योगदान की सराहना की। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के साथ समानताओं का उल्लेख करते हुए कहा है कि चारों राज्य अपनी स्वदेशी परंपराओं, जीवंत जनजातीय संस्कृति, उत्कृष्ट हथकरघा एवं हस्तशिल्प विरासत तथा अपार पर्यटन संभावनाओं के लिए जाने जाते हैं। राज्यपाल ने एक भारत श्रेष्ठ भारत को नागरिकों के बीच भावनात्मक एकता को मजबूत करने और देश की विविधता का उत्सव मनाने वाली दूरदर्शी पहल बताया। जल जीवन मिशन JJM 2.0 के अंतर्गत मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं जल आपूर्ति PHED मंत्री मामा नातुंग के साथ जल शक्ति मंत्रालय और अरुणाचल प्रदेश सरकार के बीच हुए समझौता ज्ञापन MOU हस्ताक्षर कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से भाग लिया।

0: मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि जेजेएम 2.0 पर हस्ताक्षर पेयजल सेवाओं को मजबूत और टिकाऊ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे जल संकट की समस्या के समाधान, सेवा वितरण प्रणाली में सुधार तथा प्रत्येक घर तक सुरक्षित और विश्वसनीय नल जल पहुंचाने के प्रधानमंत्री के विकसित भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। एमओयू पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल एवं राज्य मंत्री सोमन्ना की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। अरुणाचल प्रदेश के 3 स्कॉलर्स ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ आयोजित विशेष संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। इनमें असम डॉन बॉस्को विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर डॉ. तुई रिबा, दोईमुख स्थित राजीव गांधी विश्वविद्यालय के रिबुक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. बारू लोया एवं नाहरलगन स्थित तोमो रिबा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज ट्रिम्स की वैज्ञानिक बी डॉ. लाली लिंगफा शामिल है। तीनों ने नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल ट्राइब्स NFST के तहत अपनी डॉक्टरेट की पढ़ाई पूरी की है। भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा बिरसा लाइव्स इन न्यू भारत वीक के अंतर्गत आयोजित ये कार्यक्रम देशव्यापी जनजातीय गौरव उत्सव का हिस्सा है। एंटी मलेरिया मंथ AMM 2026 का औपचारिक शुभारंभ पासीघाट नगर परिषद PMC कॉन्फ्रेंस हॉल में किया गया। ईस्ट सियांग जिले की जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम द्वारा ड्रिवन टू एंड मलेरिया नाउ वी कैन नाउ वी मस्ट विषय के अंतर्गत आयोजित ये अभियान 30 जून तक जिले भर में विभिन्न जागरूकता और जनसंपर्क गतिविधियों के माध्यम से चलाया जाएगा। उद्घाटन समारोह में ईस्ट सियांग जिला चिकित्सा अधिकारी डॉ. वाईवाई पर्टिन, पासीघाट नगर परिषद के नगर कार्यकारी अधिकारी जे पर्टिन, स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रम अधिकारी तथा अन्य उपाधिकारी उपस्थित रहे। पॉलिथीन कैरी बैग पर प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए चलाए जा रहे निरीक्षण अभियान के तहत तवांग जिला प्रशासन ने आज सहायक आयुक्त एवं टाउन मजिस्ट्रेट सांगे नोरबू के नेतृत्व में पूरे तवांग क्षेत्र में सघन निरीक्षण किया। अभियान के दौरान पॉलिथीन कैरी बैग के उपयोग और वितरण पर प्रतिबंध संबंधी कार्यालय आदेश का उल्लंघन करने पर 19 दुकानदारों के खिलाफ चालान जारी किए गए, जिसका प्रशासन ने स्वच्छ और पर्यावरण दृष्टि के टिकाऊ तवांग बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए सभी दुकानदारों और नागरिकों से प्रतिबंध का पालन करने तथा पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाने की अपील भी की। अरुणाचल प्रदेश के पापुमपारे जिले के दोईमुख स्थित राजीव गांधी विश्वविद्यालय RGU ने अंतर्राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग ढांचा IIRF रैंकिंग में केंद्रीय विश्वविद्यालय की श्रेणी में 14वां स्थान प्राप्त किया है। इसके साथ ही विश्वविद्यालय ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में सर्वोच्च रैंक प्राप्त केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा। इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए शिक्षा राज्य मंत्री PD सोना ने कहा कि यह सफलता विश्वविद्यालय परिवार की शैक्षणिक उत्कृष्टता, शिक्षण अधिगमन प्रणाली को सुदृढ़ बनाने, अनुसंधान, नवाचार तथा सुशासन के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता का प्रमाण है। जापान में आयोजित होने वाले 5वें एशियाई पैरा खेल आईची नागोया 2026 के लिए भारतीय टीम में अरुणाचल प्रदेश के पैरा एथलीट बोजे मारबोम का चयन किया गया है। ये प्रतियोगिता आगामी 18 से 24 अक्टूबर तक आयोजित की जाएगी। इस उपलब्धि पर उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने सोशल मीडिया पर एक एथलीट बोजे मारबोम को बधाई देते हुए कहा है कि ये सफलता उनके अटूट संकल्प, कड़ी मेहनत, धैर्य और खेल प्रतिभा का प्रमाण है और उनकी प्रेरणादायक यात्रा अरुणाचल प्रदेश तथा पूरे देश के अनेक युवा खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहेगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: This is Akashwani Itanagar. The news read by Hageani. Under the Ek Bharat Shreshth Bharat initiative, Governor Lieutenant General KT Pranayak, accompanied by the First Lady of the State Anagha Pranayak, participated in the State Foundation Day celebrations of Telangana, Sikkim and Goa at Lok Bhavan Itanagar today. The Governor extended his warm greetings and best wishes to the people of Telangana, Sikkim and Goa, acknowledging their invaluable contributions to the nation's progress, cultural richness and democratic ethos. Drawing parallels with Arunachal Pradesh, the Governor noted that all four states share a deep respect for their indigenous traditions, vibrant tribal cultures, exquisite handloom and handicraft heritage and immense tourism potential. Emphasizing the significance of Ek Bharat Shreshth Bharat, the Governor described it as a visionary initiative aimed at deepening emotional integration among citizens and celebrating the diversity that strengthens the nation. Under the Jal Jeevan Mission 2.0, Chief Minister Pema Khandu along with PHED Minister Mama Natum today joined the live program for the signing of MOU between

फिल्म फाइटर के संगीत के साथ कार्यक्रम को अमित तरानी यहीं पर समाप्त हुआ। मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय रात के 8 बज चुके हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप पर दिए गए फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत। कार्यक्रम का पहला गीत आप सुन सकेंगे कुमार सानू की आवाज में फिल्म दीवाना से। शब्द रचना है समीर के, वसंगीत है नदीम श्रवण का। इस गीत की हमें फरमाइश की है निमानाबाद जिंद हरियाणा से। आप है जसबीर सिंह अरोरा, जतेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे फिल्म कभी कभी से किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। शब्द रचना है साहिर लुधियानवी की, वह संगीत है कयाम का। इस गीत की हमें फरमाइश की

ये है लोगर ठकुरान वाला फिरोजपुर पंजाब से आप हैं। स्वर्ण सिंह गिल, दिलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह, गुरनूर सिंह और शुभदीप सिंह।

श्रोताओं आप सुन रहे हैं आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप पर दिए गए फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे फिल्म तीसरी कसम से मुकेश की आवाज में। शब्द रचना है शैलेंद्र की व संगीत है शंकर जयकिशन का। इस गीत की हमें फरमाइश की है मेरठ कैंटोनमेंट से आप है दिग्दर्शन गौर और कविता गौर।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में फिल्म ब्रह्मचारी से। शब्द रचना है शैलेंद्र के, वसंगीत है शंकर जयकिशन का। इस गीत की हमें फरमाइश की है गोलाघाट आसाम से। आप हैं रोमेश पेट्रो और रोमू पेट्रो।

श्रोताओं आप सुन रहे हैं आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप पर दिए गए फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम का अंतिम गीत आप सुन सकेंगे फिल्म बात एक रात की से हेमंत कुमार की आवाज में, शब्द रचना है मजरूह के, संगीत SD बर्मन का। इस गीत की हमें फरमाइश की है मेहर नगर उमरखेत महाराष्ट्र से आप है अभिजीत गवंकर राही और सरिता गवंकर।

श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का, जिसके तहत हमने पेश किए आप सभी के व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित कुछ बेहद प्यारे सदाबहार नगमे। अगर आप भी इस सुरों की महफिल में शामिल होना चाहते हैं तो हमें सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक व्हाट्सएप जरूर करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6033-914908। साथ ही अपना नाम, पता, गीत के बोल और फिल्म का नाम लिखना न भूले, ताकि आपकी पसंद हमारे जरिए सब तक पहुंच सके। इसी के साथ आपकी फरमाइशों पर आधारित हमारा ये रोमानी और यादों भरा कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्में गीत यही समाप्त होता है। फिर मिलेंगे कुछ और हसीन यादों, कुछ और नगमों के साथ।

श्रोताओं, आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। आपसे थोड़ी देर में यानी 8:30 पर आप सुन सकेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित स्पोर्ट्स स्कैन, 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे न्यूज़ एट 9।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु और हरिहरन अमसाकरोनन तथा एमआर अर्जुन ने प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। हॉकी इंडिया ने महिला हॉकी नेशंस कप के लिए किया टीम का ऐलान, सलीमा टेटे को सौंपी टीम की कमान। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और निर्णायक महिला T20 मुकाबला आज टॉन्टन में। महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में कल भारत का सामना भूटान से। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में मीरा एंड्रीवा ने महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में जगह बनाई।

एन श्रीराम बालाजी और मार्सेलो डेमोलिनर पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बैडमिंटन से, जहां अनुभवी पीवी सिंधु और मेंस डबल्स की जोड़ी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और पुरुष डबल्स में हरिहरन अमसाकरुनन और एमआर अर्जुन की जोड़ी ने प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। आइए जानते हैं प्रतियोगिता के पहले दिन कैसा रहा भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन।

0: डबल्स में पीवी सिंधु और पुरुष डबल्स में हरिहरन अमसाकरुणन और एमआर अर्जुन की जोड़ी ने प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। आइए जानते हैं प्रतियोगिता के पहले दिन कैसा रहा भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन।
1: इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के पहले दिन भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन मिला जुला रहा। महिला सिंगल्स में दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने आज लगातार सेटों में जीत हासिल करके टूर्नामेंट के दूसरे दौर में प्रवेश किया। सिंधु ने इस सुपर 1000 टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के मैच में थाईलैंड की बुसानन ओंगबांग रुंगफॉन को 25-23, 21-16 से पराजित किया। पुरुष डबल्स में हरिहरन अमसाकरुणन और एमआर अर्जुन ने मलेशियाई जोड़ी नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और वी क्योंग पर 21-18, 21-10 की जीत के साथ दूसरे दौर में प्रवेश किया। मालविका बंसोड़ पहले दौर में ही टूर्नामेंट से बाहर हो गई। उन्हें थाईलैंड की सातवीं वरीयता प्राप्त पूर्णपावी चोचू वोंग ने हराया, जबकि महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद को इंडोनेशिया की फ्रेबियाना द्वीपूजी कुसुमा और मेलेसा त्रियास पुष्पिता सारी से हार का सामना करना पड़ा। किदांबी श्रीकांत पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में जापान के युशी तनाका से 19-21, 15-21 से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गए। वहीं लक्ष्य सेन भी इंडोनेशिया के अलवी फरहान से हारकर बाहर हो गए। मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो भी चीन के चेन फांगहुई और गुआ शिनवा की जोड़ी से हारकर बाहर हो गए। अब भारतीय बैडमिंटन प्रशंसकों की निगाहें सिंगापुर ओपन जीतने के बाद आत्मविश्वास से भरपूर भारत की स्टार पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पर होगी, जो कल से प्रतिस्पर्धा करते नजर आएंगे। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन।
0: एक तरफ जहां हरिहरन अमसाकरुणन और एमआर अर्जुन की जोड़ी ने, मेंस डबल्स जोड़ी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है और कल भी भारत की मेंस डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी मैदान पे आएंगे, जहां उन्होंने हाल ही में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए भारत का प्रतिनिधित्व किया। अब सीधे रुख कर लेते हैं हॉकी के मैदान की ओर, जहां नेशंस कप के लिए टीम की घोषणा कर दी गई है। हॉकी इंडिया ने एफआईएच हॉकी वुमेन्स नेशंस कप के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। ये टूर्नामेंट 15 से 21 जून तक न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में खेला जाएगा। एक नजर खिलाड़ियों पर।
2: विमेंस नेशंस कप के लिए टीम की कमान सलीमा टेटे को दी गई है, जबकि सविता और बीचू देवी खारीबाम को गोलकीपर के तौर पर टीम में शामिल किया गया है। डिफेंस में सुशीला चानू पुखराम बम, इशिका चौधरी, निकी प्रधान और ज्योति बैकलाइन में अपना इंटरनेशनल अनुभव लेकर आई हैं। उनके साथ लालथंत लुआंगी और शिल्पी डबास भी होंगी। सलीमा टेटे, नेहा, सुनीता टोपो, साक्षी राणा, दीपिका सोरेंग, सोनम, लालरेम सियामी मिडफील्ड में अपना दमखम दिखाएंगी, जबकि नवनीत कौर, दीपिका, ऋतुजा दादासो पिसल, इशिका और अन्नु फॉरवर्ड की भूमिका में नजर आएंगी। प्राची प्रिया, स्पोर्ट्स कैन।
0: ये नेशंस कप इस साल होने वाले महिला विश्व कप की तैयारियों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। अब बात कर लेते हैं प्रतिष्ठित फ्रेंच ओपन पर। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में मीरा एंड्रीवा ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। एंड्रीवा ने आज रोमानिया की सोरेना क्रिस्टी को 6-0, 6-3 से शिकस्त दी। मीरा ने दूसरी बार महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में जगह बनाई है। वहीं इसी वर्ग में आर्याना सबालेंका ने नाओमी ओसाका को 7-5, 6-3 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं कल हुए मुकाबले में मार्टियो अर्नाल्डी ने पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की की और एन श्रीराम बालाजी और मार्सेलो डेमोलिनर ने पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। आइए जानते हैं कैसा रहा उनका प्रदर्शन।
3: फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ी एन श्रीराम बालाजी और उनके जोड़ीदार मार्सेलो डेमोलिनर ने प्रतियोगिता के पुरुष डबल्स वर्ग के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इस जोड़ी ने कल रोलां गैरा में बड़ा उलटफेर करते हुए छठी वरीयता प्राप्त जर्मन जोड़ी केविन क्रावियेट्स और टिम पुएट्स के खिलाफ प्री क्वार्टर फाइनल मैच में 7-5, 6-4 से जीत दर्ज की। इंडो ब्राजीलियन जोड़ी ने संयमित प्रदर्शन करते हुए क्ले कोर्ट के इस बड़े टूर्नामेंट का प्री क्वार्टर फाइनल मैच 1 घंटे 25 मिनट में जीता। इसके साथ ही बालाजी और डेमोलिनर दोनों ने ग्रैंड स्लैम में पहली बार क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। ये टूर्नामेंट में उनकी लगातार तीसरी जीत है। इससे पहले उन्होंने दूसरे दौर में जर्मनी के जैकब फ्राइटर और मार्क वॉलनर पर 7-5, 6-2 से शानदार जीत दर्ज की थी। हालांकि पुरुष डबल्स प्रतियोगिता में भारत को कुछ झटके भी लगे। भारत के यूकी भांबरी और न्यूजीलैंड के माइकल वीनस को दूसरे दौर में अनुभवी सिमोन बोलेली और एंड्रिया वारसोसोरी के हाथों 3-6, 4-6 से हार का सामना करना पड़ा। भांबरी और वीनस ने अपने अभियान की शुरुआत मजबूती से की थी। इस जोड़ी ने पहले दौर में अर्जेंटीना के फ्रांस

0: फ्रांसिस्को सेरुंजोलो और मारियानो केस्टेलबोइन पर 7-5, 6-2 से जीत दर्ज की थी। लवलीन निगम, स्पोर्ट्स गैन।
1: वहीं पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में अलेक्जेंडर ज्वेरेव का मुकाबला राफेल जोडार से जारी है और जेकब मैसिक का मुकाबला जोआओ फोंसेका से होगा। अमेरिका की दिग्गज टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स लगभग 4 वर्ष तक खेल से दूर रहने के बाद 44 साल की उम्र में आगामी क्वींस क्लब टूर्नामेंट से पेशेवर टेनिस में वापसी करेंगी। 23 बार की ग्रैंड स्लैम सिंगल्स चैंपियन सेरेना इस ग्रास कोर्ट टूर्नामेंट में डबल्स वर्ग के जरिए प्रतिस्पर्धी टेनिस में वापसी करेंगी। और अब बात शतरंज की। नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट के 7वें दौर में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार वापसी करके खिताब की उम्मीदों को जीवित रखा है। विश्व चैंपियन डी गुकेश और आर प्रज्ञानंदा ने ओपन वर्ग में महत्वपूर्ण जीत हासिल की, जबकि दिव्या देशमुख ने महिला वर्ग में हमवतन कोनेरू हम्पी को हराया।
2: प्रतियोगिता में भारतीय खिलाड़ियों ने जबरदस्त वापसी करते हुए अपने अपने मुकाबले जीते। गुकेश ने अमरीकी ग्रैंड मास्टर वेस्ली सो के साथ मुकाबले में 1.5 अंक हासिल किए। उन्होंने क्लासिकल बाजी में मौका गंवाने के बाद आर्मागेडन टाई ब्रेक में जीत हासिल करके अपना कुल स्कोर 8 अंक पर पहुंचाया। वो हालांकि 6 खिलाड़ियों के डबल राउंड रॉबिन तालिका में सबसे निचले स्थान पर हैं। प्रज्ञानंदा ने फ्रांसीसी ग्रैंड मास्टर अलीरेजा फिरोजा को लगातार दूसरी बार क्लासिकल बाजी में हरा कर पूरे 3 अंक हासिल किए। प्रतियोगिता में उनके अब 9 अंक हो गए हैं। प्रज्ञानंदा इसके बावजूद 5वें जबकि गुकेश 6ठे स्थान पर बने हुए हैं। इस टूर्नामेंट में अभी 3 दौर की बाजियां खेली जानी बाकी हैं और भारतीय खिलाड़ियों के पास वापसी कर शीर्ष पर पहुंचने का मौका है। वेस्ली सो 12.5 अंकों के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर बने हुए हैं, जबकि अलीरेजा 10 अंक के साथ दूसरे स्थान पर हैं। प्रज्ञानंदा विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन और जर्मनी के विंसेंट कीमर सभी समान 9 अंकों के साथ संयुक्त 3रे स्थान पर हैं। दिव्या ने हम्पी को आर्मागेडन टाई ब्रेक में हराकर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। अगले दौर में दिव्या का मुकाबला शीर्ष पर चल रही बिबिसारा असोबायेवा से होगा। इस मुकाबले को जीतकर दिव्या बढ़त हासिल करना चाहेंगी। असोबायेवा ने हालांकि अपनी शानदार फॉर्म बरकरार रखते हुए क्लासिकल बाजी में चीन की झू जिनर को हराकर पूरे 3 अंक हासिल किए। के अब 12.5 अंक हैं, दिव्या के 10 अंक हैं। इससे पहले 6ठे दौर में चारों भारतीय खिलाड़ियों को हार का सामना करना पड़ा था। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
1: अब रुख कर लेते हैं फुटबॉल के मैदान की ओर, जहां कल भारत का अहम मुकाबला खेला जाना है। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में 5 बार की चैंपियन भारतीय टीम कल सेमीफाइनल में भूटान के खिलाफ खेलेंगी। ग्रुप चरण में शानदार प्रदर्शन के बाद भारत की निगाहें खिताबी मुकाबले में जगह बनाने पर लगी होंगी। भारतीय टीम 2 मैच में 6 अंक के साथ ग्रुप बी में शीर्ष पर रही, जिसमें उन्होंने मालदीव पर 11-0 की जीत के साथ अपना अभियान शुरू किया। और बात अब महिला क्रिकेट की। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 3रा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे शुरू होगा। भारत ने यास्तिका भाटिया और जेमिमा रॉड्रिक्स के अर्धशतकों की बदौलत श्रृंखला का पहला मैच 38 रन से जीता था। वहीं दूसरे मैच में कैम्प्स के शानदार प्रदर्शन की बदौलत इंग्लैंड ने वापसी कर श्रृंखला को 1-1 से बराबर कर लिया था। यह श्रृंखला 12 जून से शुरू हो रहे T20 विश्व कप के मद्देनजर बेहद अहम है। वहीं पूर्व भारतीय लेग स्पिनर साईराज बहुतुले को आज पुरुष राष्ट्रीय टीम का स्पिन गेंदबाजी कोच नियुक्त किया गया, जो पहले देश के अंडर-19 और भारत के ए टीम के साथ काम कर चुके हैं। और श्रोताओं, अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक खास खिलाड़ी के बारे में जानने का, जिसने इस बात को साबित किया कि प्रतिभा किसी उम्र, साधन या बड़े शहर की मोहताज नहीं होती। जब हौसलों में उड़ान हो और बाजुओं में दम, तो राह की हर बाधा खुद ब खुद छोटी हो जाती है। इस पुरानी कहावत को 100% सच साबित कर दिखाया है देश के एक ऐसे उभरते सितारे ने, जिसने अपनी जादुई बल्लेबाजी से पूरे क्रिकेट जगत को हैरत में डाल दिया। हम बात कर रहे हैं बिहार के समस्ती जिले के एक छोटे से कस्बे ताजपुर से निकले महज 15 वर्षीय युवा क्रिकेट सनसनी वैभव सूर्यवंशी की। जी हां, वही वैभव सूर्यवंशी जिन्होंने आईपीएल 2026 के मंच पर राजस्थान रॉयल्स की जर्सी पहनकर जब मैदान पर कदम रखा तो इतिहास खुद ब खुद लिखा जाने लगा।
3: An absolutely remarkable season for Vaibhav Suryavanshi.
4: IPL 2026

0: इसका खिताब भले ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपने नाम किया हो, लेकिन इस सीजन को वैभव सूर्यवंशी के दमदार प्रदर्शन के लिए याद रखा जाएगा। वैभव 15 साल की उम्र में ऑरेंज कैप जीतने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बने हैं। आईपीएल 2026 में वैभव ने अपनी तूफानी और सूझबूझ भरी बल्लेबाजी से ये साबित करके दिखाया कि पिछले साल का प्रदर्शन कोई तुक्का नहीं था। राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलते हुए वैभव ने आईपीएल में खेले 16 मुकाबलों में 237 के स्ट्राइक रेट से 776 रन बनाए। वैभव ने इस सीजन में 1 शतक और 5 अर्धशतक लगाए। आईपीएल में वैभव ने सूझबूझ से बल्लेबाजी की और हर गेंद को सिर्फ बाउंड्री के पार पहुंचाने की होड़ में नहीं रहे। उन्होंने मुश्किल हालातों में राजस्थान रॉयल्स की लड़खड़ाती हुई पारी को कई बार संभाला, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेले गए मुकाबले में देखने को मिला। वैभव ने दूसरे क्वालिफायर में 47 गेंद में 96 रन की दमदार पारी खेली। कगिसुर रबाडा, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह से लेकर तमाम दिग्गज तेज गेंदबाजों ने वैभव सूर्यवंशी के खिलाफ अलग अलग तरीकों से गेंदबाजी की, लेकिन वैभव ने न सिर्फ हर किसी का डट कर सामना किया बल्कि मुंहतोड़ जवाब भी दिया। बुमराह के खिलाफ पहली ही गेंद पर लगाया गया उनका छक्का शायद इस सीजन की उनकी सबसे अच्छी यादों में से एक रहेगा। वैभव ने ऑरेंज कैप, मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी, एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन, सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन और सुपर सिक्सेस ऑफ द सीजन का अवार्ड अपने नाम किया।
1: 776 runs in only his second season, his first full season in the Tara IPL. Vaibhav Suryavanshi gets the orange cap. 72 sixes hit this year. The emerging player, super striker of the season, Vaibhav Suryavanshi.
0: वैभव ने इस IPL में कुल 72 छक्के लगाए, जो एक सीजन में किसी भी बल्लेबाज के द्वारा लगाए गए सर्वाधिक छक्के हैं।
1: Goes full, the ball goes longer. This is massive. You might say it's just Suryavanshi doing Suryavanshi things. Straight back down the ground again. He's putting on a show, this young man, Vaibhav Suryavanshi. Straight up, but this time the fielder at cover is the one who's watching. That's the biggest of them all, and you thought you'd seen it all. This is third tier.
0: वैभव आईपीएल में गेंदों के लिहाज से सबसे तेज 1000 रन पूरा करने वाले बल्लेबाज भी बने। वे पावर प्ले में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे और उन्होंने डेविड वार्नर का रिकॉर्ड तोड़ा। वैभव ने एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। उन्होंने एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद के साथ 12 छक्के लगाए और 16 गेंद में अर्धशतक लगाते हुए आईपीएल प्ले ऑफ में संयुक्त रूप से सबसे तेज 50 लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया।
2: और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव हमें sportscan की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और sportscan की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। भारत ने नेपाल के साथ द्विपक्षीय मामलों के समाधान में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को नकारा। भारत ने वायु से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया। प्रसार भारती के वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म ने 2 साल के भीतर ही 1 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार किया। यूक्रेन में रूस के हमलों में 21 लोग मारे गए। और महिला क्रिकेट में भारत आज रात टॉन्टन में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। समाचार विस्तार से। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति 1 महीने के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने आज कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। ये सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है।

0: उन्हें अपनी मूल्यांकन उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं।
1: पोर्टल शुरू होते ही इसे बड़े स्तर पर साइबर हमलों के जरिए इसकी सेवाओं को बाधित करने का प्रयास किया गया। CBSE ने बताया कि इन्हीं प्रयासों के क्रम में मात्र 2 मिनट में पोर्टल पर 15 लाख हिट दर्ज की गईं और अनधिकृत रूप से फाइलों तक पहुंचने के लिए 1 लाख से अधिक प्रयास किए गए। बोर्ड ने साफ किया कि उसकी टीमें पूरी सतर्कता और तत्परता के साथ काम कर रही हैं ताकि छात्रों को हर संभव सुविधा प्रदान की जा सके। छात्रों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर CBSE ने प्लेटफॉर्म में और कई सुधार किए हैं। इसके तहत प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और निर्बाध बनाने के लिए सेशन की समय सीमा भी बढ़ा दी गई है। पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर वर्तमान में 8,000 से अधिक उपयोगकर्ता एक साथ काम कर रहे हैं। अब तक 16,000 से अधिक छात्र सफलतापूर्वक अपना मूल्यांकन जमा कर चुके हैं। पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। आनंद कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह के हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं।
2: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं, उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अनुचित संदर्भों को भी खारिज कर दिया है।
3: भारत के आंतरिक मामलों पर संयुक्त वक्तव्य में किए गए ऐसे अवांछित संदर्भों को अस्वीकार करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग हैं, जिनका ऐसे मामलों पर कोई अधिकार नहीं है। उन्हें इन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
0: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्से रॉड्रिक्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगे। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्से रॉड्रिक्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि वो अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी।
2: विजिट ऑफ द एक्टिंग प्रेसिडेंट।
4: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इन वार्ताओं में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर भी चर्चा होगी।
2: ट्रांसपोर्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातिले से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच घनिष्ठ मित्रता है और दोनों देश वैश्विक दक्षिण में प्रमुख स्थान रखते हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार की निरंतर वृद्धि का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों पक्षों को प्रौद्योगिकी, औषधीय, ऊर्जा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग करना चाहिए। इससे पहले उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन ने दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। उनके साथ दक्षिण अफ्रीका सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने स्वदेशी निर्मित वायु से सतह पर मार करने में सक्षम रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में किए गए।

0: रक्षा मंत्रालय ने कहा कि परीक्षण के दौरान मिसाइल सटीकता के साथ अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंची। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए डीआरडीओ, भारतीय वायुसेना, रक्षा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विकास और उत्पादन भागीदारों तथा संबंधित उद्योग हितधारकों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सफल परीक्षण स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी की बढ़ती परिपक्वता को प्रदर्शित करते हैं और उन्नत हथियार प्रणालियों में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवर, अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनके नियुक्तियों को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु और केरलम में अगस्त्यमलाई पारिस्थितिकी परिदृश्य के संरक्षित क्षेत्रों में अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए एक समयबद्ध अतिक्रमण उन्मूलन योजना तैयार करने और इसे प्राथमिकता के आधार पर लागू करने का निर्देश दिया है। शीर्ष न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि अतिक्रमण करने वाले सभी 118 वर्तमान और सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के खिलाफ अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति राय बृहस्पतिवार को मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू की सेवानिवृत्ति के बाद शुक्रवार से पदभार ग्रहण करेंगी। दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 तारीख तक बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय गुप्ता ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें मंगीलाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल और यश यादव और धनंजय लोखंडे की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की गई थी। एनटीए ने 3 मई को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा रद्द कर दी थी। पुनर्परीक्षा 21 जून को निर्धारित की गई है। प्रसार भारती के डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वेव्स ओटीटी की नवंबर 2024 में शुरुआत के 2 वर्षों से भी कम समय में पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि देश के सार्वजनिक डिजिटल मीडिया तंत्र के विकास में ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मंत्रालय ने कहा कि ये भारत और दुनिया भर के दर्शकों को विश्वसनीय, समावेशी और विविध सामग्री प्रदान करने वाले स्वदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्मों को तेजी से अपनाए जाने को दर्शाता है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर एक विशेष रिपोर्ट।
1: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। तमिलनाडु के तिरुपुर के रहने वाली वाणीश्री ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना ने उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया।
2: इस योजना की सहायता से मैंने अपनी नई बुटीक शॉप खोली है और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ये शॉप बहुत अच्छी चल रही है। इसके साथ ही मैं अब अपने प्रतिष्ठान की 3 से 4 और शाखाओं का सफल संचालन करने में सक्षम हो गई हूँ।
3: 2 to 3 ब्रांचेस ऑल्सो।
1: वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला की रहने वाली सरोज बाला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जनधन खाता खुलने के बाद अब सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचता है।
4: ये जीरो बैलेंस से खाता आराम से खुल जाता है, इसके लिए कोई राशि जमा नहीं करवानी पड़ती। जब कोरोना था, जब किसी के पास 1 रुपया भी नहीं होता था, उस समय लोगों को 1500 रुपया मोदी सरकार ने दिया। मोदी जी के 12 वर्ष का कार्यकाल बहुत अच्छा है, उन्होंने आम जनमानस को बहुत सुविधाएं दी है। इसमें एक हमारे को बीमा योजना मिली है, 2 लाख बीमा कवर मिलता है।
1: वही मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से

0: कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गांव तक पहुंच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। सरकार की निरंतर नीतियों और योजनाओं के चलते महिलाएं आज आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी लोखंडे प्रशांत सीताराम को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री सीताराम इससे पहले गृह मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने श्री राहुल सिंह का स्थान लिया है। सरकार ने श्री वरुण भारद्वाज को CBSE में सचिव के रूप में नियुक्त किया है। रूस ने कीव और यूक्रेन के अन्य शहरों पर ड्रोन और मिसाइलें दागी, जिसमें 21 नागरिक मारे गए और 100 से अधिक घायल हो गए। राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा है कि देश में नागरिक बुनियादी ढांचे और ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाया गया। उन्होंने अमरीका से यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइलें भेजने का भी आग्रह किया। दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के अंतर्गत सेवारत 550 से अधिक भारतीय शांति रक्षकों ने संघर्षग्रस्त देश में नागरिकों की सुरक्षा और शांति स्थापना प्रयासों में उनके समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए सम्मानित किया गया। इनमें 53 महिलाएं शामिल हैं। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। भारत ने नेपाल के साथ द्विपक्षीय मामलों के समाधान में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को नकारा। भारत ने वायु से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया। प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म ने 2 साल के भीतर ही 1 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार किया। यूक्रेन में रूस के हमलों में 21 लोग मारे गए। और महिला क्रिकेट में भारत आज रात टॉन्टन में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।